ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और

0: ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों में। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। ये समय होता है हमारे केंद्र से भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। सबसे पहले मातृभूमि को नमन करते हैं इस मातृ वंदना से।

अभी आप सुन रहे थे संत कबीर दास जी की भक्ति रचना स्वर था प्रीति प्रभु का। आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई की ये भक्ति रचना जिसे स्वर दिया है प्रीति प्रभु ने।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे संत मीराबाई की भक्ति रचना, जिसे स्वर दिया था प्रीति प्रभु ने। आइए अब आनंद लेते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए इस भजन का।

अभी आप सुन रहे थे कुमार कांछा की आवाज में ये भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समय है चिंतन का। आज चिंतन का विषय है अतिथि। आलेख है डॉक्टर उमा शंकर नगाइच का, वाचन स्वर है अरविंद सोनी का।

शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारा देवता है, अर्थात अतिथि को देवता के तुल्य सम्मान दो। तैत्तिरीय उपनिषद में माता पिता एवं आचार्य के साथ साथ अतिथि को भी देवता के समान सम्मान देने का उपदेश

अतिथि में तिथि शब्द आया है आ धन तिथि। आ यानी नहीं, तिथि दिन या समय, अर्थात जिनके आने की कोई तिथि दिन या समय निश्चित या पूर्व निर्धारित न हो वो अतिथि हुआ, जो अचानक अकस्मात उपस्थित हो जावे। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है, अतिथि उसको कहते हैं जिसकी कोई निश्चित तिथि न हो। अथर्ववेद में कहा गया है, एषवा अतिथिर्यच्छोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाशनीयात्, अतिथि वेद विद ब्राह्मण के तुल्य है, इसलिए उससे पहले गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदद्यादासनोदके अन्नम चैव यथाशक्ति संस्कृत्य विधिपूर्वकम् तृणानि भूमि रुदकम् वाक चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि सताम गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। मनुस्मृति के अनुसार आए हुए अतिथि के लिए यथाशक्ति आसन, जल और अन्न सत्कृत करके विधि पूर्वक दें। तृणासन विश्राम के लिए स्थान, जल और मीठा बोल, इन चार बातों की कमी तो सत्पुरुषों के घर में कभी नहीं होती। कठोपनिषद में अतिथि सत्कार के महत्व का प्रतिपादन करते हुए आचार्य यम की पत्नी उनसे कहती है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंश्च सर्वान् एतद् व्रंगते पुरुषस्याल्प मेधसो यस्या नश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। घर आए अतिथि का समुचित आदर सत्कार न होने पर मनुष्य की आशा, अज्ञात प्राप्त वस्तु की चाहना, प्रतीक्षा ज्ञात प्राप्य वस्तु की चाहना, संगतम सत्संगति से प्राप्त होने वाला फल, सुनृताम प्रिय वचन बोलने का फल, इष्ट यज्ञ का सुफल, आपूर्त समाज के कल्याणार्थ किए कर्मों का फल, संतान और पशु आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर यमाचार्य ने अपने घर पर 3 दिन तक भूखे रहने वाले ब्राह्मण अतिथि को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहा। इस पर नचिकेता ने यमाचार्य से पितृदोष, स्वर्ग सुख की साधना तथा आत्मज्ञान के लिए 3 वरों की याचना की। गृहस्थ व्यक्ति से अन्न जल एवं आवास आदि सुविधाओं का लाभ लेने वाले अतिथि का अनिवार्य कर्तव्य सुनिश्चित करते हुए कहा गया है कि यदि अतिथि गृहस्थ के घर 1 दिन या रात्रि विश्राम करे व अन्न जल का सेवन करे, तब उस सद्गृहस्थ की कल्याण कामना करते हुए उसे सत्य एवं धर्मयुक्त ज्ञान का उपदेश अवश्य करें, अन्यथा वो अतिथि पाप का भागी होगा। भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म माना गया है। अकस्मात घर पर आ जाने वाले अतिथि का सेवा सत्कार करना अतिथि यज्ञ कहलाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में अतिथि यज्ञ का विस्तृत विवेचन करते हुए कहा है, अब 5वां अतिथि यज्ञ अर्थात जिसमें अतिथियों की यथावत सेवा करनी होती है उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छल कपट रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते हैं, अतिथि कहते हैं। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक परंपरा में अतिथि सत्कार को यज्ञ के समान पुण्य कर्म एवं अतिथि को देवता के समान मान

0: अतिथि देवो भव।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज चिंतन का विषय था अतिथि। आलेख था डॉक्टर उमा शंकर नगाइच का, वाचन स्वर था अरविंद सोनी का। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है श्री रामचरित मानस के संगीतमय प्रसारण का। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर हैं सुरेश वाटकर और ए हरिहरन के।

पक्षीराज गरुड़ को काकभुशुंडी अपने एक पूर्व जन्म में शाप मुक्ति की कथा सुना रहे हैं। हजार योनियों में जन्म लेकर उन्हें भटकना तो पड़ा, किंतु कृपालु शंकर ने उस दुस्सह दुख से मुक्त कर दिया जो जन्म लेने और मृत्यु को प्राप्त होने में होता है। उन्हें ये भी वरदान मिला कि किसी योनि में भी जन्म लेकर उनका ज्ञान लुप्त नहीं होगा, किंतु साथ ही चेतावनी भी मिली कि वे फिर कभी किसी द्विज का अपमान न करें, क्योंकि विप्रद्रोह उसे भी भस्म कर देता है जिसे इंद्र का वज्र, स्वयं शंभु का त्रिशूल या हरि का चक्र भी नहीं मार सकते।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर थे सुरेश वाडकर और ए हरिहरन के। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है कृषि सामिकी का। आज जानकारी का विषय है ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीरज कुशवाहा।
1: जैसा कि विदित है कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस समय पे हमारे जो फलदार वृक्ष हैं जिनके बगीचे लगे हुए हैं उनका प्रबंधन बहुत ही जरूरी हो जाता है। पानी की उपलब्धता को देखते हुए उनकी कटाई छटाई रखरखाव थाला बनाना खाद देना, तो सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि अभी जो फलदार वृक्ष जिन पे फल लग रहे हैं जैसे कि आम है उसको हफ्ते में एक बार पानी जरूर देना है। थाला कम से कम 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए और थाले की जो आसपास की मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी गुड़ी हुई होनी चाहिए, मतलब भुरभुरी हो। और यहाँ NPK अगर है तो हम इसको 50 ग्राम 100 ग्राम तक, अगर 5 साल से ऊपर का है तो 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से हम उसको दे सकते हैं, लेकिन पानी या नमी वहाँ जरूर होनी

तो हमको नमी वहाँ बनाए रखनी है ताकि हमारे जो फलों का साइज है, आकार है, वो वृद्धि कर सके। इसके अलावा सभी जो भी अन्य फलदार वृक्ष हैं उनमें भी नमी बनाए रखने के लिए हमको समय समय पर पानी देना है। और इसकी जो कटाई की बात है, यानी जिसको प्रूनिंग कहते हैं, तो प्रूनिंग हमको अगर जिनमें फल आ रहे हैं, फल लगने के बाद हमको उनकी लाइट प्रूनिंग करनी है, ज़्यादा घनी प्रूनिंग नहीं करनी है। लाइट प्रूनिंग, कई पेड़ ऐसे हैं जो नई शाखाओं पर ही वृक्ष अगले वर्ष आएंगे, जैसे कि आम है, जैसे कि अमरूद है, जैसे कि आपका अनार है, जामुन है, बेर है, बेल है, तो इन सभी पर, और सहजना, ये सभी पर हमको नए फल लेने के लिए प्रूनिंग करनी होती है। तो जब इन पर फल खत्म हो जाए उसके बाद लाइट प्रूनिंग करें। जितनी भी शाखाएं उस पर लगी हैं उससे 50% से कम ही प्रूनिंग करनी होती है। लेकिन जैसे बेर है या सहजना है तो इसको प्रूनिंग करने के लिए हमको 4 मीटर, अगर पेड़ हमारा है तो 4 मीटर से इसको फ्लैश आउट कर देते हैं, मतलब 4 मीटर के बाद हम इसको पूरा काट देते हैं तने से, जिससे कि नई शाखाएं या किल्ले जिसको बोलते हैं वो निकलते हैं और उस पर हमें नए फल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जिसके पास अंगूर है, अंगूर में भी 50% तक हमको अंगूर की कटाई छटाई करनी होती है और वो अगले वर्ष वहाँ पर उसमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इससे लाभ भी बहुत सारे हैं, जो सड़े गले फल लगे हैं वो भी हट जाते हैं, कोई बीमारी किसी शाखा पे आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सब भी दूर हो जाता है। और इन पेड़ों का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि ये नई शाखाओं पे भी आते हैं। अगर आप नहीं काटेंगे तो शाखाएं तो वृद्धि करेंगी लेकिन उतनी नहीं करेंगे, अगर कम रहेंगी तो फिर कम फल उस पे हम अर्जन कर पाएंगे। इसलिए थालों का और इसका प्रूनिंग जरूरी है। इसके अलावा जो किसान भाई नया वृक्षारोपण अपना खरीफ सीजन में करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अभी से पेड़ों के हिसाब से कम 1 फिट बाई 1 फिट बाई 1, मतलब एक गहरा, एक चौड़ा, एक ऊंचा गड्ढा हमको करना है। निश्चित दूरी पर रखें, ये थोड़ा सा बदलता है कि कौन सा वृक्ष है, कहाँ पर लगा रहे हैं। तो जो भी आपने सुनिश्चित किया है कि इस बार हम इस पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे, तो उस स्थान का अगर आपने चयन कर लिया है तो वहाँ पर आप अपना गड्ढा कर लें और उसकी जो भी मिट्टी निकलेगी उसको अपन को फेंकना नहीं है, उस गड्ढे के बाजू में ही रखना है। और वृक्षारोपण का इंतजार, जब हम बारिश का समय आएगा तो हम वृक्षारोपण उसमें करेंगे, लेकिन वृक्षारोपण करने के पहले एक बार जब पूरा थाला पानी से, बारिश के पानी से भर जाए और वो नीचे की तरफ परकुलेट हो जाए, तब हमको उसमें मिक्सचर बना के वही मिट्टी लेकर

0: उसमें गोबर की पची हुई खाद लेकर कुछ फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड मिलाते हुए तब हमको वृक्षारोपण उसमें करना है, क्योंकि ऐसा ना करने पर वो जब कभी कभी पहले कर देते हैं, बारिश आने वाली है तो मिक्सचर बनाया, उस गड्ढे में रखा और हमने उसको वृक्षारोपित कर दिया, लेकिन जब उसमें जो हीट है, गर्मी है, निकलती है तो उस वजह से उसकी जड़ों को सुखा देती है, उसमें भी बल्कि रूट हेयर्स जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं तो उनको सुखा देती है, और हम जब जड़ निकालते हैं तो हमें लगता है कि जड़ें तो साबुत हैं लेकिन हमारा पेड़ सूख गया है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमको वृक्षारोपण करना है।
1: ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन कृषि सामिकी में अभी आप सुन रहे थे। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नीरज कुशवाहा। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब समय है कार्यक्रम विवरण जानने का। जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 7:05 समय रहेगा लघुवार्ता का। लघुवार्ता में आज हम आपसे बात करेंगे राष्ट्रीय एकता पर। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:20 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 7:45 पर सुनिएगा सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। 8:00 समाचार प्रभात। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बाल सभा का प्रसारण किया जाएगा 9:00। 9:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। 10:00 जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 10:05 समय रहेगा कार्यक्रम सुगम संगीत का। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। 12:30 पर भी आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति। दिन में 1:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत के तहत आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति। दिन में 1:45 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। दिन में 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। 2:30 पर भी आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे कार्यक्रम युववाणी के तहत आप सुनेंगे शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: शाम 7:21 पर ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण किया जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी इन सभी जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्याश्च वैश्विका निश्चितता काले भारतस्य भूयोपि आर्थिक वृद्धिं कर्तुं विभिन्नेषु परामर्शोपायैः चर्चितवन्तौ। जीवनस्तरं व्यापारं च सुगमीकर्तुम् अपि सविस्तरं विचारणा जाता। सदस्यैः भारते विश्वे च पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्न प्रभावानाम् अपि आकलनं प्रस्तुतम्। विदेशमंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतं नेपालं च सुदीर्घ मुक्त सीमायां सुरक्षा व्यवस्थां प्रवर्तयितुं दृढतया सहयोगं कुरुतः। अपि च उभौ देशौ संकटकाले अपि सर्वदैव परस्परं साहाय्यं कुरुतः। नवदिल्ल्यां नेपालस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनालेन सह उपवेशने डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धः जीवितजनसम्बन्धस्य सीमापारसम्पर्कस्य पारस्परिकसांस्कृतिकधार्मिकपरम्पराणां च सुदृढाधारे विनिर्मितः अस्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अन्ताराष्ट्रियसीमासु वित्तीयव्यवहारस्य भवननिर्माणस्य सम्पत्तिक्रयविक्रयणस्य च विषये विशेषसमवधानतायै आहूतवान्। एषः निर्देशः BSF इति सीमासुरक्षाबलस्य त्रिपुरासीमामुख्यालये गृहमन्त्रिणः अध्यक्षतायाम् आकारिते पूर्वोत्तरराज्यसीमाक्षेत्रविषयके सम्मेलने प्रदत्तः। गृहमंत्री विगत पंचवर्षाणां भूमिलेखानां परीक्षणाय अपि निर्दिष्टवान्। CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद अंकसत्यापनार्थं पुनर्मूल्यांकनार्थं च आवेदन समर्पणाय अंतिमां तिथिं जून मासस्य 7 दिनांकपर्यन्तं अग्रे सारितवती। परिषदा उक्तं यत् विद्यार्थिनः अद्य मध्यरात्रिं यावत् स्वावेदनानि अर्पयितुम् अर्हन्ति। इतः पूर्वम् आवेदन समर्पणाय अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकः एव आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमाननिकोबारद्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु, जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीयपुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकांतरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च उत्तमप्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकीदलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायकस्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकांतरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन 6th वारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नवचण्डीगढ़े भारत अफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्ति पर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। KL राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी में भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम इस तरह हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। नमस्कार भोपाल के आज के आकर्षण हैं पर्यावरण जागरूकता के लिए साइकिल रैली पर ग्रीन प्लेनेट बाइसिकल राइडर संगठन के सदस्य विनोद पांडे से चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे एवरेस्ट फतह करने वाली पर्वतारोही अंजना यादव से एक मुलाकात और
0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं लघु वार्ता। लघु वार्ता में आज हम आपसे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता पर। श्रोताओं, राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मतभेदों या असमानताओं को कम करना और आपसी एकजुटता को मजबूत करना। राष्ट्रीय एकता एक देश के लोगों के बीच एकता और सामंजस्य की भावना है। यह एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी देश को मजबूत बनाती है। राष्ट्रीय एकीकरण किसी देश को एकीकृत और एकजुट रहने और विकास के लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। राष्ट्रीय एकता समाज के हर वर्ग को उनकी जाति, धर्म, लिंग या भौगोलिक स्थिति से परे एकजुट करके देश को एक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय एकीकरण देश की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और देश के समग्र विकास में योगदान देता है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र के प्रति वफादारी और भाईचारे की भावना को बढ़ाती है। जब व्यक्ति हम की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है तभी सही मायने में वो सच्चा देशभक्त कहलाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महान देशभक्त हुए, उन्होंने सदैव परोपकार, परहित और देश के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए कार्य किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई और देश के नाम समर्पित किया। स्वयं कष्ट उठाए, अपनी सुख सुविधाओं को त्यागा और कठिनाई के पथ पर चलना स्वीकार किया और हमेशा यही प्रयास किया कि देश के ऊपर, देश के नागरिकों पर कभी कोई आंच ना आए, सर्वत्र खुशहाली हो, सर्वत्र शांति हो और देश तरक्की और विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचे। हमारे महापुरुषों का जीवन, हमारे देशभक्तों का जीवन हमें हमेशा सत्कर्म करने और देशभक्ति का संदेश देता है। समाज में व्याप्त बुराइयों, अत्याचार, अनैतिकता, शोषण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। जिस प्रकार एक परिवार सभी परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलता है, उसी प्रकार एक देश भी वहां के सभी नागरिकों के सहयोग से चलता है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। हमें एक दूसरे का सदैव सम्मान करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचे या हानि पहुंचे। देश में आने वाले किसी भी संकट एवं चुनौती का साथ मिलकर सामना करना चाहिए। देश हमारा है और हम देशवासी हैं, इस भावना को प्रबल बनाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि देश हित से बढ़कर कोई कार्य नहीं है, सबसे ऊपर है देश का गौरव। श्रोताओं, देश देशवासियों का है और प्रत्येक नागरिक देश की ताकत है। जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार देश का एक एक नागरिक देश रूपी बगिया को महकाता है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की बगिया हमेशा महकती रहे, तो हमें एक बगीचे की भांति रहना होगा, तभी हम कहेंगे कि हम सब एक हैं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहाँ औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
1: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में 1-9-11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
0: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। CBSE ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है, ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही NEET UG 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है।

जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति की सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोभा पैठणकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। ये खुला मंच होगा जिसमें जन प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत की अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के लिए के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय गृह उद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर मालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर।

ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत से। फिल्म आबरू से हमने ये गीत लिया है। गीत जीएल रावल का है, संगीत सोनिक ओमी।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में आबरू फिल्म से लिया गीत। गीत जीएल रावल का था, संगीत सोनिक ओमी का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आन फिल्म से लिया गीत। गीत शकील बदायूं ने का है, संगीत नौशाद का।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है, फिल्म है पतिता।

उपकार फिल्म से लिया ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया था मुकेश ने। गीत कमर जलालाबादी का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा गीत, संगीत नौशाद का है, फिल्म है संघर्ष।

दिल बदायूं ने का था संगीत नौशाद का। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

श्रोताओं नमस्कार। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले करते हैं ये सकारात्मक बात। श्रोताओं, सीखना एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती है। सीखने की कोई उम्र और सीमा नहीं होती है। हम जितना सीखते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमें नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। श्रोताओं, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ हमेशा बांटना चाहिए। अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। हम जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमारे महापुरुष, हमारे देश के महान व्यक्ति हमेशा से ही हमारे आदर्श रहे हैं। सभी ने कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ना, हमेशा सच की राह पर चलना और हर मुश्किल से लड़ना और आगे बढ़ना सिखाया है। यदि ये बातें हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन भी सुखी बन जाता है। और जब ये बातें हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाते हैं या बताते हैं तो उन्हें भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसलिए यदि आपके पास कोई अच्छी बातें हैं तो उन्हें दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए और दूसरों की अच्छी बातों को स्वयं सीखिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। ये तो हुई एक सकारात्मक बात। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज 7 जून है और 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा खाद्य जनित बीमारियों को रोकने और सुरक्षित भोजन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन यह भी याद दिलाता है कि असुरक्षित भोजन से गंभीर बीमारियां और आर्थिक नुकसान हो सकते हैं। हमें इन दिवसों के महत्व को समझना चाहिए और खाद्य सुरक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और श्रोताओं, अब आपको देते हैं जानकारियां। विकासखंड मुख्यालय पर जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में आए करीब 40 किसानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने रसायनों को त्याग कर कम लागत वाली जैविक खेती अपनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक खेती के दुष्परिणामों से अवगत कराना था। ग्रामीण स्तर पर पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उद्देश्य था। वरिष्ठ वैज्ञानिक M.K. भार्गव ने वर्तमान कृषि संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केवल शिवपुरी जिले में ही दवाओं और रसायनों की लगभग 300 दुकानें खुल चुकी हैं। ये बताता है कि हमारी खेती कितनी खर्चीली हो चुकी है। यह बाजार पर निर्भर भी हो चुकी है। ये जहरीले रसायन मनुष्य, पशु और पर्यावरण के लिए धीमे जहर का काम करते हैं। राजेश भदौरिया ने समूहों के माध्यम से किसानों को समझाया कि रासायनिक खाद से जमीन बंजर हो रही है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। जैविक सब्जियां शुद्ध और सुरक्षित होती हैं, वे कुपोषण से लड़ने में मददगार भी होती हैं। उन्होंने सभी से मानसिकता बदलने की अपील की। जन अभियान परिषद विकास खंड

करियराने ग्राम पंचायत खैराघाट डामरौन कला सिरसौद व मामोनी खुर्द में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण की रक्षा ही नहीं करते बल्कि मानव जीवन का आधार हैं। प्रकृति के प्रति हमारी छोटी सी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और हरित भविष्य का निर्माण कर सकती है। श्रोताओं, और जानकारियां हम आपको देंगे। फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना। और ये गीत हमें यही संदेश देता है कि हमें जिंदगी में हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए और हंसते हंसते अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। और अब आपको देते हैं कुछ और जानकारियाँ। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर जिले के सभी छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाने के लिए जून माह में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 1 जून से 30 जून तक प्रत्येक शनिवार को जिले के सभी विद्यालयों में मेगा अपार दिवस आयोजित किया जाएगा। पहले चरण का आयोजन 6 जून को शुरू हुआ। इसमें स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार की जा रही है। जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी दफेदार सिंह सिकरवार ने बताया कि अपार आईडी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज है। इसमें उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति, अन्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे। यह आईडी भविष्य में उच्च शिक्षा, कौशल विकास, विभिन्न शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपयोगी होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यार्थियों के पास अपार कार्ड नहीं है, उनका आधार कार्ड बैंक, डाकघर, अन्य अधिकृत आधार केंद्रों के माध्यम से तत्काल बनवाया जाए। इससे समय सीमा में उनकी अपार आईडी तैयार की जा सकेगी। वहीं आधार और यूडाइस पोर्टल में दर्ज जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि या नाम में भिन्नता होने पर अभिभावकों की सहमति से उसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे मेगा अपार दिवस के दौरान विद्यालय पहुंचकर अपने बच्चों की अपार आईडी बनवाने में सहयोग करें। डीपीसी ने बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए बीईओ, पीआरसीसी, संकुल प्राचार्य, जन शिक्षकों के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने अपार आईडी निर्माण की साप्ताहिक प्रगति की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। एक और जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें पहली बार पटेल विकास समिति द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान पंचवटी में रक्षा सूत्र बांधा गया। खास बात यह रही कि इस दौरान पंचवटी के फेरे लेकर रक्षा सूत्र बांधकर संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर नेशनल मेडिकोस ऑर्गेनाइजेशन NMO शिवपुरी इकाई ने मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह कार्यक्रम एक पौधा माँ के नाम अभियान के तहत चलाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर शासकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं एवं समाज में पर्यावरण संरक्षण, हरित वातावरण के निर्माण तथा वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एन.के. जैन के मार्गदर्शन में NSS एवं इको क्लब के अंतर्गत किया गया। इसमें छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए महाविद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। प्राचार्य ने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, प्रदूषण कम करने तथा मानव जीवन को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी कार्यक्रम एक पौधा माँ के नाम अभियान के तहत चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, ये थी तमाम सारी जानकारियां जो हमने आप तक पहुंचाई। और अब आपको दे देते हैं मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी। आज दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और रात में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा और आर्द्रता 62% रहने की संभावना है। और अब सूचना पर एक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से हमें दीजिए अनुमति।

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल।

0: मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
5: Collaborate closely to maintain security.
6: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
5: Full potential of our time.
3: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
7: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान

0: दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमान बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के

0: किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
1: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्ते की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म से लिया गीत, जिसे गाया है शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों ने। गीत SH बिहारी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं रेस्ट हाउस शिवपुरी से नरेंद्र जैन, मंजुला जैन, निकिता, कायरा, कुलदीप, अमायरा, रवि, पर्व, अवनी, मेघ सिंह, भूपेंद्र और इनके सभी साथी। आइए सुनवाते हैं आप सभी श्रोताओं को आपकी पसंद का गीत फिल्म प्यार झुकता नहीं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रफू चक्कर से, जिसे गाया है कंचन और शैलेंद्र सिंह ने। गीत गुलशन बावरा का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित लल्लूराम, छोटू डुंडुन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ग्राम बिजौरा गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से इस गीत को सुनना चाहते हैं गोलू अहिरवार, अजय, रोहित, दिनेश और इनके मम्मी पापा। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर रफू चक्कर फिल्म से लिया ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। ये गीत हमने लिया है फिल्म कयामत से। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर कान्हा सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी ने। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कयामत फिल्म का ये गीत।

आइए अब सुनते हैं राम बलराम फिल्म से लिया गीत, जिसे गाया आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, संगीता, सरिता, नेत्राम और भूपेंद्र साहू।

अभी आप सुन रहे थे राम बलराम फिल्म से लिया गीत। इसी के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बाल श्रोताओं के लिए कार्यक्रम बाल सभा।

0: बच्चों जय हिंद। बाल सभा कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दीदी। बच्चों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों अभी आपकी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, पर शीघ्र ही आपके स्कूल खुलने वाले हैं। बच्चों आपने छुट्टियों में बहुत मौज मस्ती की होगी, कई अच्छी अच्छी जगह आप घूमने भी गए होंगे। लेकिन बच्चों अब आप तैयार हो जाइए नई कक्षा में जाने के लिए। आप अपने स्कूल बैग को अच्छी तरह से तैयार करिए, नई किताबें और कॉपियों पर कवर चढ़ाइए, अपने यूनिफॉर्म को धोकर अच्छी तरह से प्रेस करके रखिए, अपने जूते मोजे सब तैयार करके रखिए। बच्चों कहने का मतलब यही है कि अब आपके स्कूल खुल रहे हैं तो आपको स्कूल जाने की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। बच्चों आप अच्छी तरह से छुट्टियों में रिलैक्स हो गए हो और अब आप मन लगाकर अगली कक्षा में प्रवेश करें। बच्चों जब स्कूल खुलते हैं तो आप अपने लंच बॉक्स से रोज नई नई तरह की चीजें लेकर जाते हैं। आप मम्मी से रोज फरमाइश करते हैं कि वो लंच बॉक्स में नई नई चीजें बनाकर रखें। बच्चों विद्यालय में आपके बहुत सारे मित्र होते हैं जो आपके साथ बैठकर लंच करते हैं। बच्चों आप अपने टिफिन को अपने मित्रों के साथ शेयर किया करो, इससे आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है और सबके साथ शेयर करके खाना खाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो बच्चों अब आप अच्छी तरह से स्कूल जाने की तैयारी कीजिए और हमेशा स्वस्थ और खुश रहिए। बच्चों ये तो हमने आपसे की एक अच्छी सी बात स्कूल खुलने को लेकर और स्कूल की तैयारी के ऊपर, और अब आपको सुनवा रहे हैं एक वार्ता जिसका विषय है सांच बराबर तप नहीं। वार्ताकार हैं श्रीमती स्वाति बिलगैया।
1: बच्चों हमारे जीवन में सच्चाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सांच बराबर तप नहीं एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है कि सच्चाई से बड़ा कोई तप या कोई कठिन साधना नहीं होता। यानी जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है और ईमानदारी से जीवन जीता है वह सबसे बड़ा तपस्वी होता है। यह बात बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि बचपन में सीखे गए संस्कार ही आगे चलकर उनके पूरे जीवन को दिशा देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सांच क्या है। सांच का मतलब है सत्य, यानी जो बात सही हो, वास्तविक हो और जिसमें कोई झूठ या छल ना हो। वहीं तप का अर्थ है कठिन साधना या अनुशासन। इस प्रकार यह कहावत हमें सिखाती है कि सच्चाई पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे श्रेष्ठ और पवित्र मार्ग है। बच्चों जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सच बोलने और झूठ बोलने के बीच चुनाव करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे से गलती हो जाती है, जैसे कि उसने गलती से कोई चीज तोड़ दी, तो वह डर के कारण झूठ बोल सकता है। लेकिन यदि वह सच बोलता है तो हो सकता है कि उसे डांट पड़े, परंतु उसके माता पिता और शिक्षक उस पर विश्वास करेंगे और उसकी ईमानदारी की सराहना करेंगे। सच्चाई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे विश्वास बनता है। जब कोई बच्चा हमेशा सच बोलता है तो उसके मित्र, शिक्षक और परिवार वाले उस पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा आगे चलकर उसे जीवन में सफलता दिलाता है। इसके विपरीत यदि कोई बच्चा बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और वह अकेला पड़ सकता है। सच्चाई पर चलना कभी कभी कठिन जरूर होता है, लेकिन यह हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब हम सच बोलते हैं तो हमें डर नहीं लगता क्योंकि हमें कुछ छिपाना नहीं पड़ता। वहीं झूठ बोलने पर हमेशा डर बना रहता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। इस तरह सच्चाई हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। महान व्यक्तियों के जीवन से भी हमें सच्चाई की प्रेरणा मिलती है। जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उनके इसी गुण के कारण पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान देता है। बच्चों यह जरूरी है कि छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई का पालन करें। जैसे स्कूल में होमवर्क न करने पर बहाना न बनाएं, बल्कि सच बताएं। खेलते समय नियमों का पालन करें और धोखा ना दें। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी आदतें आगे चलकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। सांझ बराबर तप नहीं एक बहुत ही गहरी और प्रेरणादायक कहावत है। इसका अर्थ है कि सच्चाई से बढ़कर कोई तप या साधना नहीं होती। जो व्यक्ति हमेशा सत्य का पालन करता है वह सबसे महान होता है। बच्चों, जीवन में यह सीख बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन में सीखी गई अच्छी आदतें पूरे जीवन को सुंदर और सफल बनाती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सच्चाई क्या होती है। सच्चाई का मतलब है हर परिस्थिति में सही बात कहना और गलत काम से दूर रहना। तप का अर्थ है कठिन साधना या अनुशासन। इसलिए यह कहावत हमें बताती है कि सच्चाई पर टिके रहना आसान नहीं होता, लेकिन यही सबसे बड़ा गुण है। अब हम इसे समझते हैं। जैसा कि पहले एक उदाहरण लेते हैं, स्कूल का अनुभव। मान लीजिए एक बच्चा है राहुल। एक दिन राहुल से खेलते समय स्कूल की खिड़की का शीशा टूट जाता है। वह डर जाता है और सोचता है कि अगर सच बताएगा तो उसे डांट पड़ेगी। उसके दोस्त उसे झूठ बोलने की सलाह देते हैं, लेकिन राहुल हिम्मत करके शिक्षक के पास जाता है और सच्चाई बता देता है। शुरू में शिक्षक थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन बाद में राहुल की ईमानदारी से खुश होकर उसकी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे छिपाना गलत है। इस तरह राहुल को सच्चाई का महत्व समझ में आता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। सच्चाई के क्या क्या लाभ होते हैं? इन उदाहरणों से हमें यह समझ में आता है कि सच्चाई का पालन करने से कई फायदे होते हैं, जैसे लोगों का विश्वास जीतते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन को शांति मिलती है, जीवन में सम्मान मिलता है। इसके विपरीत झूठ बोलने से कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान ही होता है। एक झूठ को छिपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे व्यक्ति परेशान रहता है। महान व्यक्तियों से प्रेरणा। हमारे देश के महान नेता महात्मा गांधी ने हमेशा सत्य का पालन किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार बनाया। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हों। इसी कारण वे पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। बच्चों को चाहिए कि वे छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई का पालन करें, जैसे होमवर्क ना करने पर बहाना ना बनाएं, खेल में ईमानदारी रखें, अपनी गलती को स्वीकार करें, किसी को धोखा ना दें। ये आदतें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। सच बोलने में थोड़ा डर लग सकता है, थोड़ी शर्म आती है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। टीचर डांट सकते हैं, मम्मी पापा नाराज हो सकते हैं, दोस्त रूठ सकते हैं, लेकिन सच के साथ एक अजीब सी ताकत भी आती है। सच बोलने के बाद मन हल्का हो जाता है, जैसे भारी बोझ उतर गया हो। तप क्या होता है? तप का मतलब है खुद को काबू में रखना। गर्मी के मौसम में बिना पानी पिए रहना तप है। सर्दी में ठंडे पानी से नहाना तप है। रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना भी एक तरह का तप है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जंगलों में जाकर सालों तक आंख बंद करके ध्यान करते थे। वो ठंड, गर्मी, भूख, प्यास सब सहते थे। उसे तपस्या कहते थे। उनका मानना था कि इससे मन शुद्ध होता है और शक्ति बढ़ती है। सांच बराबर तप क्यों नहीं? अब सोचो, जंगल में जाकर तप करना कठिन है, लेकिन सच बोलना उससे भी कठिन है, क्योंकि तप में तुम सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देते हो, लेकिन सच बोलने में तुम्हें अपने मन को काबू में करना पड़ता है, अपने डर को हराना पड़ता है, अपने स्वार्थ को मारना पड़ता है। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, यही असली

0: फिर तुम बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी सच का साथ नहीं छोड़ते। स्कूल में सांच का तप, इस उदाहरण से समझें। तुम रोज स्कूल जाते हो, वहाँ भी तुम्हारे सामने कई बार सच और झूठ का चुनाव आता है। होमवर्क नहीं किया और टीचर ने पूछा तो क्या कहोगे? मैडम, मैं कल खेल में लग गया था, इसलिए नहीं कर पाया। ये सच है? या कहोगे, मैडम कॉपी घर पर भूल गया, ये झूठ है। परीक्षा में तुमको एक सवाल नहीं आता, पास बैठे दोस्त की कॉपी दिख रही है, क्या तुम नकल करोगे? नकल करना भी एक झूठ है। खुद से कहोगे कि मुझे नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन नकल नहीं करूंगा, ये सांच का तप है। किसी दोस्त ने क्लास में शरारत की और टीचर ने तुमसे पूछा कि किसने किया? अगर तुमने देख लिया है तो सच बोलना। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डर लगता है कि दोस्त नाराज हो जाएगा, लेकिन सच बोल देना ही सही है। सांच का तप कैसे करें? ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में आ जाए, इसके लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है। आज के जमाने में सच, आजकल मोबाइल और इंटरनेट का जमाना है, यहाँ भी सच का तप है। कभी कभी व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है जो गलत होता है, लेकिन हम उसे बिना सोचे दोस्तों को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये भी एक झूठ फैलाना है। सच का तप यह है कि पहले जांच करो, फिर आगे भेजो। सोशल मीडिया पर लोग अपने बारे में झूठी बातें लिखते हैं, ज़्यादा अमीर दिखाते हैं, ज़्यादा खुश दिखाते हैं, लेकिन सच का तप यह है कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो, दिखावा मत करो। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि सांच बराबर तप नहीं, सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। पहाड़ चढ़ना तप है, उपवास रखना तप है, सच बोलना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने आप से लड़ना पड़ता है। एक बार सच बोलने की आदत पड़ गई तो समझो तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें डरा नहीं सकती, क्योंकि जिसके साथ सच होता है उसके साथ ताकत होती है, जिसके साथ सच होता है उसके साथ भगवान होते हैं। इसलिए बच्चों याद रखो, परीक्षा में कम नंबर आ जाए तो कोई बात नहीं, खेल में हार जाओ कोई बात नहीं, लेकिन कभी सच का साथ मत छोड़ना, क्योंकि सच ही वो रास्ता है जो तुम्हें हमेशा सही जगह लेकर जाएगा। और हाँ, सच बोलने की शुरुआत आज से ही करो, अभी से, इसी पल से।
1: सांच बराबर तप नहीं। बच्चों, अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वार्ताकार थी स्वाति विलगैया। बच्चों, अपनी इस वार्ता में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वार्ता ज़रूर पसंद आई होगी। बच्चों, हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप कोई अच्छी बात सुनते हो या देखते हो तो उसे अपने जीवन में ज़रूर उतारो, तभी उसकी सार्थकता है। महज किसी बात को सुन लेना और उसको नज़रअंदाज कर देना, इससे हमारा जीवन पथ आसान नहीं रहता। अच्छी बातों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा लक्ष्य जो है वो हमारे नज़दीक होता है, हमें हमेशा सफलता प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों, जीवन में अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें करो, अच्छे मित्र बनाओ और अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करो। बच्चों, बहुत सारी बातें आपसे हो गई इस कार्यक्रम में, और अब आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा बाल गीत।

आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

0: बंदर फिर आया, छुन छुन करती आई चिड़िया।
1: बच्चों, ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना और हम उम्मीद करते हैं कि ये गीत भी आपको बहुत पसंद आया होगा। बच्चों, चलते चलते हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि इस समय एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम। बच्चों, आपके स्कूल में भी इस कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे होंगे और स्कूलों के साथ साथ कई स्थानों पर, खुले स्थानों पर जहाँ पर वृक्ष लगाए जा सकते हैं, वहाँ पर ये अभियान चलाए जा रहे हैं। बच्चों, इन अभियानों को चलाने का यही उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, उनका संरक्षण करें और अपने पर्यावरण को सहेजें। बच्चों, आप जानते ही हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में वृक्षों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, ये जो अभियान चलाए जाते हैं, आप इनमें सहभागिता ज़रूर कीजिए। अपने आसपास, घर की छत पर, गमले में या जहाँ कहीं भी आपको जगह मिले, आप भी वृक्ष लगाइए, पौधे लगाइए और उनकी अच्छी तरह से देखभाल कीजिए। बच्चों, बहुत सारी बातें आपसे हो गई और अब कार्यक्रम का समय भी हो रहा है समाप्त। तो अपनी दीदी को दीजिए अनुमति। बच्चों, जय हिंद।

अभी नन्हे नन्हे बाल श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 तोमिका हर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ये सुदास के गाए गीत से। ये गीत हमने लिया है फिल्म दादा से। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा।

0: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में आजा सनम फिल्म से लिया गीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी, ललिता और नारायण खर्चे। आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आजा सनम फिल्म से लिया ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। आवाज अनुराधा पोटवाल की है, गीत रानी मलिक का है, संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम भड़भूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा पुष्पा, ममता मंजू, बबीता राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना दुर्गा, मधुवाला, विनोद विशाल, मिलन और ओम प्रकाश।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अपराधी फिल्म से लिया गीत, जिसे आवाजें दी हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने।

अफसाना प्यार का, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे गाया है अलका याग्निक और साथियों ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका अनूपुर, रिश्का और रॉविन।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में कालिया फिल्म से लिया गीत। इस गीत को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक।

कालिया फिल्म के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख है दीपक शर्मा का, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मंदसौर जिले में ये महीना विकास, जनकल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन के अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों का साक्षी रहा। जिले में प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से कई योजनाएं धरातल पर उतरती दिखाई दी। जिले में नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए 27 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। बीते दिनों हुई इस लोक अदालत में न्यायालयों के 656 तथा प्री लिटिगेशन के 1048 सहित कुल 1704 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित मामलों का भी सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। मंदसौर जिले के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन बीते दिनों किया गया, जिसके तहत वैदिक मंत्रोच्चार, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने भारत के गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और विकसित भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला। किसानों को नवीन तकनीकों से जोड़ने के लिए कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसान रथ अभियान का शुभारंभ बीते दिनों जिले में किया गया, जिसके तहत जिले के विभिन्न विकास खंडों में 10 दिवसीय भ्रमण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, बीज उपचार, मृदा परीक्षण, कृषि यंत्रीकरण और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर गुदरी टोला क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालकर नागरिकों को डेंगू से बचाव के उपाय बताए गए। देखें साफ करें ढके थीम पर आधारित इस अभियान में आमजनों को घरों में जमा पानी की नियमित जांच और सफाई का संदेश दिया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में अब तक 417 खेत तालाब तैयार हो चुके हैं, जबकि 820 तालाबों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन तालाबों से वर्षा जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर सुधरेगा तथा किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध होंगे। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सांसद निधि से निर्मित निक्षय वाहन को बीते दिनों जिले में रवाना किया गया। यह विशेष वाहन 905 गांवों एवं नगरीय क्षेत्रों में भ्रमण कर टीबी रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, जांच सुविधा उपलब्ध कराने तथा मरीजों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही जरूरतमंद मरीजों को पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में आंगनवाड़ी केंद्र लालाखेड़ा में बीते दिनों आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिविर में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, एक्सरे, टीबी जांच, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर एवं रक्तचाप के परीक्षण किए गए तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन समिति की बैठक में बीते दिनों औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 283 नए उद्योग पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 1428 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत नगर वन में अधिकारियों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उद्यानिकी महाविद्यालय में क्लीन एंड ग्रीन गतिविधि आयोजित कर विद्यार्थियों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना घाट पर सामूहिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत इस वर्ष 6,650 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 5,000 युवाओं को प्रशिक्षण और लाभ भी प्रदान किया गया है। जिले में 39,000 से अधिक किसानों से 2.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान भी किया गया है, जिसका कुल भुगतान 600 करोड़ से अधिक रहा है। महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माहवारी स्वच्छता दिवस पर बीते दिनों जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कार्यशाला एवं रैली के माध्यम से स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां प्रदान की गई। वहीं पुलिस विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रदर्शनी एवं विशेषज्ञ के व्याख्यानों के माध्यम से युवाओं और नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। मंदसौर जिले के सीतामऊ में रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले में 220 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिसमें 149 युवाओं का प्राथमिक चयन विभिन्न निजी कंपनियों के लिए किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के हितग्राहियों को 15 लाख रुपए के चेक भी इस अवसर पर वितरित किए गए। जिला चिकित्सालय एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रयासों से अब तक क्लब फुट से ग्रसित 34 बच्चों का सफल उपचार जिले में किया जा चुका है। वहीं मलेरिया निरोधक माह के तहत बीते दिनों मलेरिया जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन जिले में किया गया, जिसके तहत नागरिकों को मलेरिया के लार्वा की पहचान, रोकथाम और उपचार की जानकारी दी गई तथा बुखार से पीड़ित प्रत्येक मरीज की जांच कराने के निर्देश भी दिए गए। मंदसौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे मंदसौर जिले की चिट्ठी। आलेख दीपक शर्मा का था और वाचन स्वर अभिषेक कटिहार का।
2: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सपना अवस्थी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस रचना से।

0: आने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस की यात्रा
1: I'm here.
2: भी तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर रखना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। कलाकार हैं सपना अवस्थी। आइए अब सुनते हैं ये रचना।

इस रचना के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सपना अवस्थी को। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए शंकर महादेवन और रवि रक्स खोटी की आवाज़ में। फिल्म है कल हो ना हो।

बड़े घर की बेटी। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत, जिसे गाया था मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोटवाल ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं अभिजीत और साथियों की आवाज में बागी फिल्म से लिया ये गीत।

अनुराधापुर फाल और नितिन मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है, एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर मिनट से, जिसका प्रसारण होता है अगले दिन सुबह 11 बजे से। हमारे फोन नंबर हैं 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है और चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैं ओम प्रकाश नेमा विद्यानगर तेलखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं।
0: और मौसम कैसा है? अब तो बारिश थोड़ी हो गई होगी।
1: हाँ, बारिश हो जाती है शाम को या सुबह हो जाती है।
0: चलिए तो बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम सुनना चाहते हैं मुस्कान फिल्म का गीत के बोल है जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
0: चलिए आपका जो गीत है हम खोज लेते हैं और आपको सुनवा देते हैं उदित नारायण की आवाज में ये गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में आपने फोन किया
1: के लिए देरी रहेगा मैडम, ये आपके लिए भी रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं कोलारस से हरिशंकर खेमरिया बोल रहा हूँ, जिला शिवपुरी से।
0: हरिशंकर खेमरिया जी,
1: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या करते हैं हरिशंकर जी आप?
1: मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, पहले शिक्षक था।
0: अरे वाह, क्या पढ़ाते थे आप?
1: प्राइमरी सेक्शन 1 से 5 तक।
0: अच्छा,
1: छोटे बच्चों को पढ़ाता था मैं।
0: अच्छा जी, कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: करिश्मा कुदरत का फिल्म का नाम है और गीत के बोल है, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी है दुनिया की रीत रे।
0: जी, गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवाई देते हैं हरिशंकर जी। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी के कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी। ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: भगवान सिंह परमार जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, स्वस्थ हैं, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और बताइए क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: अभी तो मौसम बहुत गर्म है, काफी गर्मी पड़ रही है दीदी हमारे इधर तो अभी, और तो एक दो चार दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी दीदी, उससे कुछ टेम्परेचर गिर गया है गर्मी का।
0: तो थोड़ी बहुत राहत मिली होगी?
1: जी हाँ दीदी, थोड़ी बहुत राहत मिली है, बाकी 3-4 डिग्री से बहुत फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर से गिरने से।
0: हाँ जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: गुड बॉय बैड बॉय और गाने के बोले मेरी मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम जो थाम ले दामन बदल जाएंगे कदम, ये वाला गीत सुनना है दीदी?
0: बिल्कुल, आपका जो गीत है आपको सुनवाई देते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी।

0: हम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी, मैं राजू यादव, ग्राम प्रेंका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी राजू जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बगीचे में बैठे हुए, बहुत सारे आम लगे हुए।
0: अरे वाह अरे वाह, तापमान भी कम हो गया है तो बगीचे में बैठने में अलग आनंद आ रहा होगा आपको।
1: तापमान तो बहना जी एकदम ठंडा, क्योंकि बारिश हो चुकी है ना हमारे गाँव बुंदेलखंड।
0: जी जी जी जी जी। तो राजू जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में आज?
1: मूवी का नाम इतिहास।
0: इतिहास फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जुदा अपने दिलबर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी।
0: अलका याग्निक जी की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं, बस आपके रेडियो सेट पर ये गीत आपको सुनाई देगा।
1: मित्रों के नाम लेना क्या भाई?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमारे मित्र है बलवान सिंह यादव है, अनूप कुमार राजपूत जी है, महेश राजपूत है, ग्राम उपरेंका, थाना मुस्कर, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते, अम्बेडकर चौक से अगर वार्ड खोलाई से राम सखी परमानंद।
0: राम सखी परमानंद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना चल रहा है ना, अंत में वहाँ 15 दिन तक बरसात आ जाए तो ठीक है।
0: अच्छा, तो अभी आपके वहाँ पर बारिश नहीं हुई है? बहुत सारी जगहों पे थोड़ा तूफान आया, थोड़ी बारिश हो गई, तो थोड़ा
1: नहीं है,
0: ठंडक हो गया है।
1: आंधी हवा तो चली है मगर बरसात नहीं हुई है।
0: अच्छा,
1: हम लोग देख रहे हैं अब जब तक हो जाए, तक जाए 20 तारीख तक जहाँ तक मानसून आने की संभावना है।
0: चलिए बढ़िया है, यही उम्मीद करते हैं कि समय से मानसून आ जाए और थोड़ा राहत मिले, थोड़ी ठंडक मिले। आप कार्यक्रम में कौन सा आज गीत सुनना चाहते हैं बताएं?
1: डंकी का कोई भी गीत सुना दे।
0: तो लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर। राम सखी जी, कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैम,
0: किनसे बात हो रही है?
1: बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, तहसील विजयगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
0: बद्री प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम।
0: तो कार्यक्रम है फोन करे गीत सुने, कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम
0: जी
1: राम तेरी गंगा मैली का ताजा सॉन्ग सुना दीजिए।
0: आपकी पसंद का गीत अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बद्री प्रसाद जी।
1: थैंक यू मैडम।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं नेपाल से सागर से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
0: तिलक राणा जी, कैसे हैं आप? आपकी बहुत चिट्ठियाँ आती हैं और बहुत अच्छे गीतों की आप फरमाइश करते हैं
1: और आप लोग हमारे पत्नों को प्राथमिकता भी देते हैं।
0: जी जी जी तिलक राणा जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
1: एक्चुअली मैं मैडम मैं डॉक्टर हरी सिंह को केंद्रीय विश्वविद्यालय में एलडीसी के पद पे कार्यरत था।
0: अच्छा जी,
1: सन 2024 में मैं रिटायर्ड हो गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या अभी किस तरह की होती है दिनचर्या, क्या करते हैं?
1: कुछ मॉर्निंग में उठते हैं सुबह, थोड़ा बहुत अपना मॉर्निंग वॉक करते हैं और अभी तो गर्मी का समय चल रहा है तो वैसे भी आलस कर रहता है, बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: अच्छा, ये तो है, ये तो अभी सभी जगह का है। कुछ जगहों पे थोड़ी बारिश हो गई है तो तापमान कम हुआ है, थोड़ी राहत है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: मैम आज मुझे लोक परलोक का गाना मिल जाएगा,
0: लोक परलोक फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: लोक परलोक का वो वाला गाना है मैम, बादल कब बरसोगे।
0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं लोक परलोक से। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करिए गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्ते
1: फोन करेगी सुने।
0: जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
1: हाँ, मेरा नाम मैडम जसराम जाटव है,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जिला सीपी से, गांव का नाम जोराई।
0: कैसे हैं जसराम जी?
1: हाँ बढ़िया मैडम,
0: तो कार्यक्रम जो है वो फोन करें गीत सुने, इसमें आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हमको सुनना है मैडम, गाने के बोल रहेंगे मेरा प्रिय घराया हो राम जी। मूवी का नाम तो मैडम मेरे को याद नहीं है।
0: कविता
1: हाँ मैडम,
0: कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गीत है,
1: हाँ हाँ
0: फिल्म
1: मैडम
0: याराना से।
1: मैडम मैडम परिवार वालों का नाम लेना चाहते?
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे भाई हैं रघुवीर जाटव, और एक और भाई है हमारे लहरी जाटव, और हमारे भतीजे हैं पिंकी जाटव, संजय जाटव, प्रिंस जाटव, सचिन जाटव।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार नमस्कार, मैं गुना से बात कर रही हूँ, सरिता शर्मा।
0: सरिता शर्मा जी, गुना से।
1: जी
0: कैसी हैं
1: जी
0: आप?
1: जी हम और आप कैसी हैं मैम?
0: मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हाँ बढ़िया है, और बहुत खुशी हुई कि आज नंबर लगा है, हमारी फरमाइश का गीत हमें सुनने को मिलेगा, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इस नंबर बहुत लगाती रहती हैं,
0: जी
1: लगता ही नहीं।
0: कोई बात नहीं, आज लग गया आपका फोन और आज आपको जरूर हम आपकी फरमाइश का गीत सुनवाएंगे। क्या करती हैं वैसे सरिता जी आप?
1: मैं शिक्षक हूँ, 9 से 12 तक हायर सेकेंडरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो
1: जी
0: कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं आप, बताएं?
1: जी आप सुनवाए साजन फिल्म का, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: साजन फिल्म से अनुराधा
1: जी
0: पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है, हमारे पास उपलब्ध है।
1: जी
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने तथा स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से छुटकारा मिलता है। वहीं प्रदेश में भी भोपाल और शिवपुरी सहित कई जगह पर संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत ने 9 करोड़ से अधिक विशिष्ट आभा कार्ड जारी किए हैं और 1 करोड़ से अधिक डिजिटल चिकित्सा विवरण आभा कार्ड से जोड़े गए हैं। और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव के तहत आज निमाड़ी गायन, उत्तराखंड का तांदी नृत्य, कर्मा नृत्य, पनिहारी नृत्य, महाबली छत्रसाल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाट्य की प्रस्तुति भी होगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। आप सब ने सुनना चाहा है राम बलराम फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाजें दी हैं मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

और अब सुनिए खुशबू फिल्म का ये गीत। आशा भोंसले की आवाज में गुलजार का गीत है और राहुल देव बर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, रऊ भाई, शाहिद भाई, गांधी पार्क अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

रानी जसवानी गंगेड़ी जिला उज्जैन से, गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान, लोकेंद्र वर्मा, रूपाखेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली, जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं दयावान फिल्म का।

मैं रानी जसवानी गंगेड़ी जिला उज्जैन से, गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान, लोकेंद्र वर्मा, रूपा खेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल निरंजन माली, जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और

रानी जसवानी गंगेड़ी जिला उज्जैन से, गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान, लोकेंद्र वर्मा, रूपाखेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली, जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: escena.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की दूसरी कड़ी।
2: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने।

अब तक आपने सुना, रायबरेली की साई नदी पर कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले दो मजदूरों शंभू पासवान और यशवंत दलित मजदूरों की दुर्दशा, उनकी भूख व दूसरी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और मजदूर यूनियन के नेताओं की कमियों पर टिप्पणी करते हैं। यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर पर यूनियन के पैसों का गबन करने के कारण उसे यूनियन से हटाए जाने की बात चलती है। यूनियन में अभी तक दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, अतः यशवंत को राम बहादुर की जगह प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की कोशिशें तेज होती हैं। नारायणी चारिंगखेरा नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट में मजदूरी करके अपना पेट भरती है। उसका ब्याह तो हो चुका है मगर गौना नहीं। साइट के मैनेजर का छोटा भाई चौधरी नारायणी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसे गर्भवती बनाकर चला जाता है। अब आगे

0: क्या क्या कह रही है नारायणी तू? उस चौधरी का बीज तेरे पेट में?
1: हाय हाय, तेरी मति मारी गई है क्या? अरे तुझे सोचना चाहिए था कि तू शिबू की अमानत है।
0: मुझसे बड़ी भूल हुई काकी, मुझसे बड़ी भूल हुई। जमीन पर रहकर मैं आसमान छूने चली थी, मगर अब तो मैं पाताल में धस गई हूँ। बस काकी, अब तो मेरे सामने एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता।
1: देख नारायणी, देख, अब ये रोना धोना बंद कर और अपनी बात मुझसे कह।
0: काकी, मेरे लिए सिवाय मौत के दूसरा रास्ता क्या है?
1: नारायणी,
0: मन करता है कि इसी समय नदी में डूब मरूं।
1: खबरदार, खबरदार नारायणी, फिर कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। अरे ये जीवन तो भगवान का दिया है, इसे लेने का अधिकार केवल भगवान को ही है।
0: तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं काकी? आज नहीं तो कल दुनिया को इस बारे में तो पता चलेगा ना। किस तरह दिखा पाऊंगी दुनिया वालों को अपना मुंह?
1: तो चिंता ना कर नारायणी, चिंता ना कर, भगवान इतना निष्ठुर नहीं है, भगवान पर भरोसा रख।
0: काकी, क्या भगवान मेरा अपराध क्षमा कर देंगे? मुझे इस बदनामी से भगवान बचा लेंगे क्या?
1: अरे क्यों नहीं, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। देख नारायणी, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच है, इसका जिक्र किसी दूसरे से ना करना।
0: लेकिन इससे होगा क्या काकी?
1: तू बहुत ना बोल नारायणी, हमारी बात को ध्यान से सुन। हाँ, क्या नाम है उसका? शिबू। हाँ शिबू, देख हम उससे मिलके तेरे गौना की बात कर लेंगे।
0: काकी, काकी, क्या वो मेरा मेरा गुनाह क्षमा कर देंगे?
1: अरे क्षमा तो वो जब करेगा ना, जब उसको कुछ पता लगेगा।
0: भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, अपना अपराध छिपाकर जिंदगी भर उनका सामना किस तरह करूंगी मैं, किस तरह?
1: अरे तू दिमाग पर अधिक जोर ना डाल। देख नारायणी, मेरी बात को ध्यान से सुन। गौना होने के एक महीना बाद शिबू को कहना कि वो बाप बनने वाला है। अरे बच्चा तो सतमासा आठमासा होना कोई नई बात नहीं है ना, इस तरह तेरी इज्जत बच जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ नारायणी, हमारी बात मान ले नारायणी, इसी में तेरा भला है।
0: ठीक है काकी, आप मुझसे बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है।
1: हाँ बेटा,
0: आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी।
1: हाँ ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक, हम आज ही जाकर शिबू से बात करते हैं। हाँ तू घबराना।
2: नारायणी, तुम नहीं जानती नारायणी, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूं, कितना खुश हूं।
0: किस्मत तो मेरी जागी है जी, जो आप जैसा पति मुझे मिला।
2: नारायणी सच बात तो यह है नारायणी कि भगवान ने हम दोनों का संयोग स्वर्ग में ही लिख दिया था। और हम दोनों ने तो भगवान की इच्छा को पूरा किया है ना?
0: जी, स्वामी आज हमारे मिलन की पहली रात है।
2: नारायणी,
0: अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना?
2: अरे नारायणी कैसी बात करती है तू, अरे तू मेरी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी का मतलब तू जानती है ना तू?
0: जी, इसका मतलब हुआ कि मैं आपके शरीर का आधा हिस्सा हूँ।
2: अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छे, बस इसी तरह मैं भी तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा हूं, यानी कि हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हुए हैं, है ना? इस नाते हम दोनों को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना होगा, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना होगा, तभी तो हम अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं, है ना
0: जी?
2: क्यों नारायणी, तुम मेरी बात से सहमत हो ना?
0: जी, पति का वचन तो परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। क्या कभी परमेश्वर के आशीर्वाद से असहमत हुआ जा सकता है?
2: नारायणी, तुम कितनी अच्छी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी ना, कुछ मांगना चाहती थी।
0: हाँ जी।
2: तो फिर कहती क्यों नहीं, कहो ना।
0: पहले आपको वचन देना होगा।
2: वचन
0: जी?
2: पहले बताओ तो सही।
0: नहीं नहीं, पहले वचन दीजिए ना।
2: ओह अच्छा बाबा, अच्छा लो मैंने वचन दिया। आप कहो क्या कहना चाहती हो।
0: वो मुझसे भारी भूल हो गई है, भारी अपराध हुआ है मुझसे। हाँ, आपको मेरी इस भूल को क्षमा करना होगा।
2: नारायणी, ये तुम क्या कह रही हो? अरे भला ऐसा तुमसे कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो?
0: वो बात ये है कि मैं
3: देख नारायणी, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। नरक बन जाएगी जिंदगी, नरक बन जाएगी।
2: ए नारायणी, ये क्या बात है? अरे तुम ये कहते कहते क्या सोचने लगी नारायणी?
0: कुछ भी तो नहीं।
2: अरे तो फिर बताओ ना, अरे तुमसे कौन सा गंभीर अपराध हुआ है, बोलो।
0: बात ये है कि
2: बोलो।
0: नहीं, वो अभी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इंसान से गलती तो कभी भी हो सकती है ना, इसलिए क्षमा करने का वचन पहले ही मांग लिया आपसे।
2: नारायणी तुम भी ना। खैर कोई बात नहीं। ए नारायणी
0: जी,
2: हमें मिलन की इस रात को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारायणी इधर आओ, आओ मेरी बाहों में आओ। नारायणी इधर आओ, नारायणी
0: स्वामी,
2: नारायणी नारायणी,
0: आपकी बाहों में कितना सुख है स्वामी, इस सुख की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है।
2: और मेरा भी। देखो नारायणी, हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी रूपी बगिया को प्यार से सींचेंगे। मैं दुनिया के सारे सुख तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ए नारायणी, मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाकर रखूंगा। मलिका नारायणी
0: स्वामी।

0: यूनियन के तमाम साथियों,
1: सुनो सुनो कह रहे हैं कुछ सुनो।
0: आज की ये आम सभा यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर को यूनियन का धन गबन करने के आरोप में उनके पद से हटाए जाने के विषय को लेकर बुलाई गई थी।
1: ठीक है, अच्छा
0: लेकिन राम बहादुर ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, साथ ही यूनियन का धन वापस लौटाने का वादा किया है, अतः उन्हें क्षमा दान दिया जाता है। यदि आप में से किसी को कोई भी संदेह हो तो वो प्रश्न कर सकता है। मेरे विचार में हमारे निर्णय के बाद किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
2: क्या आप भगवान हैं अध्यक्ष महोदय?
0: नहीं, मैं आप लोगों का अपना साथी हूँ, किंतु यशवंत तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया, शायद ही किसी की समझ में आया हो।
3: यशवंत के प्रश्न का अर्थ मैं जानता हूँ अध्यक्ष महोदय।
0: शंभू, तुम इस नादान का समर्थन कर रहे हो।
3: क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, नादान कौन है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आप भगवान नहीं हो सकते।
0: क्या मतलब है तुम्हारा शंभू?
3: अध्यक्ष महोदय, मतलब ये कि राम बहादुर ने हो सकता है कि आपके सामने गलती मान ली हो, या ये भी हो सकता है कि आप उससे मिल गए हो।
0: शंभू पासवान, क्या तू जानता है कि तेरे इस आरोप का क्या परिणाम होगा?
4: महोदय, मैं डेढ़ टांग का जरूर हूँ, किंतु इतना जरूर जानता हूँ कि शंभू का परिणाम उसकी मौत से अधिक नहीं हो सकता।
0: अरे ओ लिचू, तेरे कहने का मतलब क्या है?
1: लिचू के कहने का क्या मतलब है और शंभू आपको क्या समझाना चाहता है, ये बात आपको पल भर में समझ आ जाएगी।
0: लगता है आप सभी दलित मजदूर आपस में सलाह करके आए हैं कि आज की आम सभा नहीं चलने देंगे।
1: गलत, बिल्कुल गलत। ये सोच तो आपकी है अध्यक्ष महोदय, अन्यथा आप राम बहादुर का पक्ष स्वयं नहीं रखते, बल्कि राम बहादुर अपना पक्ष खुद इस आम सभा में रखता।
5: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं?
1: इसलिए कि तुमने मजदूरों के ब्लड बैंक पर डाका डाला है राम बहादुर, मजदूरों के खून पसीने की कमाई को यूनियन के नाम पर हजम किया है तुमने। यहाँ मौजूद मजदूर इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
6: हम इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
0: शांत हो जाइए, कृपया शांत रहिए। हो हल्ला मचाने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।
1: अध्यक्ष महोदय, रवि कांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजदूर साथियों, अतः आप लोग शांति का दान दीजिए। यदि मजदूर भाइयों की ओर से अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय से आप लोगों की ओर से मैं बातचीत करूं।
3: अध्यक्ष महोदय, आपको कोई इतराज है?
0: नहीं नहीं।
1: तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप यूनियन के प्रभावशाली जिला अध्यक्ष हैं, आपको जिला स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन आम सभा में आम सदस्यों की सहमति के बिना नहीं।
0: यशवंत, तुम मेरी पावर को ललकार रहे हो।
1: क्षमा करें महोदय, मैं तो सिर्फ अपने मजदूर भाइयों का पक्ष रखना चाहता हूँ। आप बहुमत के बिना अल्पमत में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कानून सम्मत नहीं होगा।
0: तो तेरे पर निकल आए हैं।
1: गलत महोदय, गलत। ये मुहावरा चींटियों पर फिट बैठता है, इंसानों पर नहीं। और मैं एक इंसान हूं।
0: चलो चलो, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। अब तुम बताओगे कि आम सभा का निर्णय क्या होना चाहिए?
1: राम बहादुर की यूनियन से बर्खास्तगी।
0: बिल्कुल चाहिए। ठीक है, मैं आम सभा की राय का सम्मान करते हुए राम बहादुर को यूनियन से निकालने का ऐलान करता हूं, किंतु इस स्थान पर किसी की नियुक्ति

0: नियुक्ति तो करनी होगी ना, इसलिए मैं धैर्य अध्यक्ष महोदय, अब क्या परेशानी है शंभू, आम सभा की राय से मैं सहमत तो हो चुका हूँ।
1: आज तक यूनियन में दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया।
2: तो फिर हमारी इच्छा है महोदय कि इस बार होने वाली नियुक्ति में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि रखा जाए।
0: अरे वाह वाह, तुम लोग क्या चाहते हो कि हम यूनियन में अनपढ़ गवारों को रख ले?
2: सावधान अध्यक्ष महोदय, वो जमाना गुजर गया जब दलित सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार होकर अशिक्षित रह जाया करते थे। अरे बाबा साहब अंबेडकर और गांधी भगवान की कृपा से आज हमें बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आज दलित समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं।
0: हाँ हाँ होंगे, मगर तुम लोगों के बीच ऐसा कौन है जो जो पढ़ा लिखा है?
1: क्यों नहीं, हमारा यशवंत मैट्रिक पास है। हम यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में यशवंत के नाम का प्रस्ताव रखते हैं।
0: मजदूर साथियों, अध्यक्ष पद का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो बहुमत का सम्मान करे। इस नाते मैं राम बहादुर को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त करता हूँ। उसके स्थान पर आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दलित समाज के नए नेता यशवंत को नियुक्त करता हूँ।
1: भाई यशवंत, भाई यशवंत।

0: नारायणी, ओ नारायणी, अरे कहाँ हो तुम?
1: आती हूँ जी।
2: जी कहिए, क्या बात है जी? श्री मुंह क्यों लटका रखा है?
3: नारायणी, बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी।
2: हाँ, क्या हुआ है? मुझे भी तो कुछ पता चले।
3: ब्राह्मण महाराज की मृत्यु हो गई है।
2: क्या?
3: नारायणी, अब मेरे पास कोई काम नहीं रहा। एक बार फिर मैं बेकार हो गया।
2: अब क्या होगा जी?
3: अरे तो मैं सोच रहा हूँ, अरे घर का खर्चा कैसे चलेगा?
2: उसकी चिंता ना करो जी, मैं तो मजूरी कर ही रही हूँ ना।
3: सो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि घर बैठे मैं खाट तोड़ूं और तुम मजूरी करने जाओ? क्या एक मर्द को ये शोभा देगा?
2: भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे।
3: देखो तो नारायणी, कौन आया है?
2: हाँ, अभी देखती हूँ जी। अरे बसुमती काकी, आप?
4: नारायणी,
2: कहिए कैसे आना हुआ?
4: अरे यहीं से वापस लौटाना चाहती है क्या?
2: माफ करना काकी, अंदर आइए ना।
3: अरे राम राम काकी।
4: जीते रहो बेटा, जीते रहो।
3: काकी सब ठीक ठाक तो है ना?
4: अरे क्या बताऊं बेटा, कल युग है कल युग। ये कंपनी का मैनेजर, अरे ये तो कल युग का रावण है, है? हम गरीब मजदूरों को मजदूरी से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है।
2: काकी ये क्या कह रही हो?
4: तुम्हारी कसम नारायणी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं।
3: लेकिन काकी, मजदूरों को अब कहाँ भेजा जा रहा है?
4: साई नदी पर शिबू। अरे यहाँ से 50 मजदूरों को साई नदी पर भेजा जा रहा है।
2: मतलब ये कि यहाँ से हम लोगों का दाना पानी उठ गया है?
4: अरे कुछ न कह नारायणी, सामान वामान बांध ले, संध्या तक यहाँ से निकल पड़ना होगा।
2: ठीक है, ठीक है काकी। हाँ,
4: जल्दी कर।
2: ठीक।
3: नारायणी, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया?
4: अरे क्या हुआ
3: नारायणी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
4: अरे हट तो जरा शिबू, हमें देखने तो दे।
3: हाँ काकी, देखो ना, तुम्हें देखो मेरी नारायणी को क्या हो गया है, देखो तो।
4: अरे देखने तो दे।
3: हाँ देखो देखो।
4: अरे अरे लड्डू खिलाओ शिबू, लड्डू खिलाओ। अरे बाप बनने वाला है तू?
3: अरे सच काकी, अरे मैं बाप? अरे सच काकी।

0: क्यों भैया, अरे कैसे चहलकदमी कर रहा है?
1: पर तू कौन है भाई?
0: अरे भाई मैं लिचू हूँ, यहीं पर सफाई कर्मचारी हूँ।
1: ठीक है, तो मुझसे क्या काम है?
0: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं।
1: तो भैया फिर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है?
0: अरे बर्बाद नहीं कर रहा भैया, मैं तो समय पास कर रहा हूँ।
1: समय पास क्या मतलब?
0: मतलब साफ है भैया, अरे तू भी अकेला घूम रहा है, मैं भी अकेला घूम रहा हूँ। अरे भैया क्यों ना थोड़ी देर यही सही किनारे बैठते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, तो समय भी आराम से कट जाएगा।
1: अरे लगता तो तू दिलचस्प है, तेरे साथ दोस्ती अच्छी निभेगी।
0: ये हुई ना बात, आओ बैठते बैठते
1: चल।
0: तूने भाई मेरा नाम तो जान लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया।
1: मेरा नाम है शिबू धासला।
0: ओहो शिबू धासला, अरे अच्छा नाम है शिबू, बुरा ना माने तो एक बात पूछो शिबू।
1: हाँ हाँ पूछना, अरे दोस्त की बात का बुरा नहीं माना जाता लिचू। जो कहना है मुझे अपना समझ कर कह।
0: अच्छा अच्छा एक बात बता शिबू, तू इतना परेशान क्यों है? अरे मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। हाँ
1: लिचू भैया, अब क्या बताऊं, साई की साइट पर आए हुए 7 महीने हो गए, मगर देखो ना अभी तक कोई काम ही नहीं मिला।
0: अरे शिवू भैया, हम लोग तो भगवान भरोसे हैं, काम मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।
1: अरे लिचू भैया तुम कितने अच्छे हो, कितने भले हो। लिचू भैया तुमसे दिल खोलकर बात करने की इच्छा हो रही है।
0: अरे तो कर ना शिवू कर, दिल की बात कहने से मन का बोझ उतर जाता है और इंसान स्वयं को हल्का फुल्का महसूस करता है, कर शिवू।
1: वो क्या है देख लीजिए, बात ये कि मेरी घरवाली नारायणी को तो काम पर रख लिया है।
0: हाँ?
1: मगर मुझे नहीं रखा।
0: अरे
1: अब देखना, घरवाली कमाए और मरद खाए, ये क्या मुझे शोभा देता है?
0: कहता तो तू ठीक है शिवू, लेकिन ये भी सच है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता शिवू। हाँ
1: लेकिन लिचू मुझे खाली नहीं बैठा जाता रे।
0: लिचू भैया देख भाई, वादा तो नहीं करता पर हाँ कोशिश जरूर करूंगा।
1: अच्छा कोशिश करना।
0: शिबू शराब पीता है क्या?
1: नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता।
0: अरे तो आज पी ले, अरे दोस्ती के नाम पर।
1: अरे नहीं नहीं लिचू नहीं, देख मुझे माफ कर, अरे मुझे क्षमा कर लिचू।
0: शिबू
1: अरे देख ना यार, अगर कहीं नशे में बहक गया तो
0: अरे
1: तो गजब हो जाएगा।
0: ए शिबू अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा।
1: नहीं नहीं मैं देख अरे सोच ले, देख बाद में तू मुझे कुछ मत कहना।
0: ए शिबू चिंता मत कर, चल मेरे साथ
1: चल चल चल। कहां?
0: अरे खलासी लंगर पर, यहाँ पास में ही है, वहां की शराब की मस्ती का तो बस क्या कहना है, आजा।
1: अच्छा, देख ले फिर सोच ले तू।
0: अरे चल शिवू चल चल आजा
1: आजा, ठीक है चल।
2: तुम्हारा इनाम यशवंत है?
3: हाँ मगर तुम कौन हो?
2: यूनियन में तुम ही दलितों के नए नेता के रूप में शामिल हुए हो।
3: हाँ लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो?
2: अभी समझ जाओगे। एक काम करो, लो बीड़ी पियो, साथ में ये माचिस भी दे रहा हूं तुम्हें, ये बीड़ी भी जलाती है और आग भी लगाती है।
3: देखो मैं बीड़ी नहीं पीता।
2: सुना है, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो, रात को ड्यूटी के वक्त तुम अड्डेबाजी में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते।
3: मैं जा रहा हूँ, अजनबी लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है।
2: ठहरो यशवंत, मैं भेटा गांव के लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक हूँ, सहायक माने एजेंट। अब तुम समझ सकते हो कि मुझसे बात करने पर तुम्हारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं।
3: शास्त्री जी का बहुत नाम सुना है मैंने, उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं मैं, लेकिन तुम मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो?
2: मुझे शास्त्री जी ने खुद तुम्हारे पास भेजा है।
3: किस लिए?
2: तुम्हें समझाने के लिए।
3: क्या मैं ना समझूं?
2: हो तो तुम समझता, लेकिन राजनीति की सारी बातें नहीं जानते, इसीलिए मुझे शास्त्री जी की ओर से तुम्हारे पास आना।

0: लेकिन तुम या शास्त्री जी मुझसे क्या चाहते हो?
1: देखो, तुम शास्त्री जी की सलाह के बिना अपनी ओर से कोई कदम मत उठाना। जैसा शास्त्री जी कहें वैसा ही तुम करना, हमेशा फायदे में रहोगे।
0: फायदा? कैसा फायदा?
1: अरे क्या तुम नहीं जानते, यहाँ का ओवरसीयर से लेकर भद्दे मुंह वाला इंजीनियर सबको जानते हैं हम। इंजीनियर कंपनी से हर महीना 2000 लेकर चुपचाप बैठ जाता है, और एसडीओ हर महीने 1500 रुपए लेकर संतुष्ट रहता है, और तो और वो ओवरसीयर हर महीने सिर्फ 50 रुपए लेकर ही, मतलब तुम समझ रहे हो ना?
0: जी हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ मैं आपका मतलब।
1: लोकल लीडर शास्त्री जी यही चाहते हैं कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए, सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाए, और इसके लिए वे मजदूरों की हड़ताल पर विचार कर रहे हैं।
0: क्या हड़ताल?

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा सत्र 2025-26 की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। अब परीक्षाएं 16 जून से 23 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली, छत्रसाल, बुंदेल, केसरी के जीवन पर नृत्य नाट्य की प्रस्तुति होगी। और मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम आपसे बहुत सी चर्चाएं करेंगे, साथ ही सुनवाएंगे गीत संगीत। सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं भूखे को अन्न प्रत्येक को रोटी के विषय।

में। बहनों, यह विषय केवल भारतीय संस्कृति की महानता का परिचायक ही नहीं है, बल्कि मानवता, सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी व्यक्त करता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और भूख जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां संस्कृति का आधार केवल भौतिक प्रगति नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाएं हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, तब उसके लिए भोजन ही सबसे बड़ा उपहार होता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में अन्नदान को महादान कहा गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, वह सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करता है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तब किसी भी व्यक्ति का भूखा रहना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यही भावना भूखे को अन्न, सभी को रोटी के विचार में निहित है। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का सार है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न को देवता के समान सम्मान दिया गया है। भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसलिए भोजन का सम्मान करना और जरूरतमंदों तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। बहनों, हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल भोजन की उपलब्धता नहीं है, बल्कि ऐसा भोजन उपलब्ध होना है जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, पोषण से भरपूर हो और सभी लोगों तक समान रूप से पहुँच सके। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी दुनिया के करोड़ों लोग भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार आज भी लाखों बच्चे पर्याप्त भोजन और कुपोषण के अभाव में अपना शारीरिक और मानसिक विकास नहीं कर पाते। दूसरी ओर बड़ी मात्रा में भोजन प्रतिदिन बर्बाद भी हो जाता है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि भोजन का सही प्रबंधन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हमारे गाँव में पहले अतिथि, निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार हजारों स्वयंसेवकों और संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद की। यह भारतीय संस्कृति में निहित सेवा और करुणा की भावना का उदाहरण है। बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भोजन की बर्बादी को रोकें। हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यह न केवल संसाधनों की बचत करेगा, बल्कि भोजन के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करेगा।

0: आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं राष्ट्र की तीन दिशाओं में सुरक्षा के कवच महासागर के विषय में। बहनों, यह तो आप सभी जानती ही हैं कि भारत एक महान समुद्री राष्ट्र है। हमारे देश की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तट रेखा है और तीन दिशाओं से महासागर हमें घेरते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये महासागर केवल जलराशि नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र के प्राकृतिक कवच हैं। महासागर हमारी सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। हमारे मछुआरों की आजीविका, समुद्री जैव विविधता और पर्यटन उद्योग भी महासागरों पर निर्भर है। महासागर पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए महासागर मानव जीवन के लिए अमूल्य है। लेकिन आज महासागर प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। विश्व महासागर दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम समुद्रों को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और समुद्र पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि राष्ट्र की तीन दिशाओं के ये कवच हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों की सुरक्षा करते हैं। बहनों, पानी को सुरक्षित रखने के लिए आइए सुनवाते हैं आपको यह वार्ता, जिसका विषय है रहिमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती नम्रता पांडे।
1: पानी है अनमोल, इसका नहीं है कोई तौल। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, या यूं कहें कि सभी सजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। ताजे और स्वच्छ पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से जल बचाना जल संरक्षण है। यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि दुनिया भर के लोगों के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी ताजा और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। स्वच्छ जल प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत मूल्यवान है और इसका संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। बहनों, हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि जल है तो जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में पानी की एक एक बूंद के लिए हमें ना तरसना पड़े, तो उसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की तीव्र गति और बढ़ता प्रदूषण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश के आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी, और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाए रहते हैं। आगामी वर्षों में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। दुनिया भर में 75% से ज्यादा लोग पानी की कमी के संकटों से जूझ रहे हैं। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और इससे संबंधित

बहुत सी समस्याओं को जानने के बावजूद हम अभी भी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हैं। आज भी शहरों में फर्श चमकाने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कार्यों में पानी को बेतहाशा बहाया जाता है। जहां लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोग जल की महत्वता को समझ रहे हैं, लेकिन जहां बिना किसी परेशानी के जल मिल रहा है, वहां लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। प्रदूषित जल में आर्सेनिक, लोहा आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसे पीने से तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित और दूषित पेयजल है। दुनिया भर में हर साल लगभग 3.4 मिलियन लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। विश्व में पानी से पैदा होने वाली बीमारी से हर 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। विश्व में करीब 1 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सभी के लिए बहुत चिंताजनक है। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती है, अन्यथा अगले कुछ वर्ष हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। पृथ्वी पर भयंकर सूखे जैसे जल संकट को टालने के लिए हम सबको जल को कम से कम और सही तरीके से उपयोग करना होगा। अगर हम चाहें तो अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा सैकड़ों गैलन पानी बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। हमें अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे हाथ धोते, मंजन करते समय पानी के नल को बंद रखना चाहिए। स्नान के दौरान पानी बचाने के लिए प्रवाह प्रतिबंधित शॉवर हेड्स लगाना। घरों में किसी भी तरह के पानी के लीकेज को तुरंत ठीक कराना चाहिए ताकि इससे होने वाली पानी की बर्बादी को रोका जा सके। शॉवर के स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। कार धोने के लिए पाइप के इस्तेमाल से काफी मात्रा में पानी नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसके स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी और फलों को खुले नल के नीचे धोने की बजाय पानी से भरे हुए बर्तन में धोना चाहिए। बहनों, घर में जो हम रोज पीने का पानी भरते हैं, तो बर्तन

कि अधिकांश वर्षा जल बर्बाद हो जाता है। हालांकि यह सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इस वर्षा जल का उपयोग वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। घरों में छत से इस तरह से पाइपलाइन फिट करवाएं जिससे घर की छत से सीधे वर्षा जल पाइपलाइन द्वारा सोखते गड्ढे में जाए। सोखते गड्ढे से पानी सीधे धरती में जाकर भूमिगत हो जाता है जिससे जल का स्तर बढ़ता है और हमें जल की प्राप्ति होती है। कुएं तालाब बनाकर भी बहते हुए पानी को रोका जा सकता है। वर्षा जल संचयन भूजल स्तर को कम होने के बजाय और अधिक बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सूखे के प्रभाव को भी कम करता है। किसान ड्रिप सिंचाई के रूप में जानी जाने वाली इस सिंचाई विधि का उपयोग करके जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तकनीक में पौधों को संकीर्ण ट्यूबों का उपयोग करके पानी पिलाया जाता है और यह पानी सीधा पौधों के आधार तक पहुंचाया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं क्योंकि वृक्ष बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। हम बारिश की बूंदों को सहेजें और पानी बचाएं। तो क्यों ना पर्यावरण की खातिर वर्षा जल संचयन के संधारणीय पर्यावरण अनुकूल और जैविक तरीके अपनाएं, जैसे वर्षा उद्यान। इसमें गीली घास के साथ साथ देशी पौधों का उपयोग करके पानी के दूषित पदार्थों को हटाया जाता है। यह वर्षा जल को जमीन में और अधिक रिसने देता है जिससे भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक और आसान और सरल तरीका है वर्षा तस्तरी बनाना। यह एक अनबाउंड रेन वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऊपरी हिस्सा होता है जो उल्टे छतरी जैसा दिखता है, जिसमें एक फनल होता है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करता है और इसे नीचे से जुड़े बैरल में स्टोर करता है। वर्षा बैरल स्थापित करना। रेन बैरल कुछ भी हो सकता है जो वर्षा जल भंडारण कंटेनर के रूप में काम करता है, जैसे खाली ड्रम। छत से पानी को इसमें स्थानांतरित करने के लिए यूनिट को एक पाइप से जोड़ना होगा। कंटेनर को मच्छरों और कीड़ों के प्रजनन स्थल बनने से रोकने के लिए बैरल की ओर जाने वाले डाउन स्पॉट्स के सिरों को स्क्रीन करते हुए इसे एक टाइट फिटिंग टॉप से ढकना सुनिश्चित करना है। वर्षा श्रृंखला बनाना। घर की साज सज्जा को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त लाभ के साथ रेन चेन मजेदार और फैशनेबल एक्सेसरीज है जो एकत्रित पाइपों से वर्षा जल को स्टोरेज कंटेनर या नाली में स्थानांतरित करके अपवाह से बचने में मदद करती है। बहनों, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम वर्षा जल को बचा सकते हैं। यह हर समुदाय के लिए बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और उन क्षेत्रों में अविश्वसनीय समाधान प्रदान करता है जहां पर्याप्त वर्षा होती है लेकिन भूजल की आपूर्ति नहीं होती है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कई तकनीक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के लिए भूजल के इस्तेमाल को मितव्ययता से करे तो इसका प्रभाव और भी अधिक होगा। हर साल हमारी जल आपूर्ति कम होती जा रही है। हम कृत्रिम जल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं और हमें अपने ग्रह पृथ्वी पर उपलब्ध जल स्रोतों पर निर्भर रहना है। जनसंख्या वृद्धि और हमारी लगातार बढ़ती आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप पानी की असंतुलित आवश्यकता के कारण दुनिया भर में पानी की कमी महसूस की जाती है। इसने जल संरक्षण के बारे में पर्याप्त चिंताओं को जन्म दिया है। आज हमें जरूरत है संसाधन प्रबंधन की, दक्षता में सुधार की और ऊर्जा को संरक्षित और सुरक्षित रखने की। तूफानी पानी और अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण और गैर पारंपरिक जल स्रोतों को स्थापित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश की खोज की जानी चाहिए। साथ ही बेहतर जल भंडारण के अवसर भी तलाशने चाहिए। बहनों, हम सभी ने ये पंक्ति तो सुनी ही है कि रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जीवन का प्रारंभ लगभग 300 करोड़ साल पहले पानी से हुआ था। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से व्याप्त है। वजन के हिसाब से सजीवों के शरीर में 65-70% जल ही होता है। जल के बिना ना प्राणी जगत जीवित रह पाएगा और ना ही वनस्पति जगत। इस रंग बिरंगी दुनिया का अस्तित्व पानी पर ही टिका हुआ है, इसलिए अनायास ही यह कहना पड़ता है कि बिन पानी सब सून। रहीम दास जी कहते हैं कि पानी को बचाकर

0: रखिए, क्योंकि बिन पानी के सब कुछ सूना है। रहीमन पानी राखिए, हर जतन से पानी रखिए। पानी चले जाने पर फिर उबरने की कोई आशा नहीं रहती, इसलिए बहनों पानी को बचाकर रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है।
1: बहनों अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था रहीमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती नम्रता पांडे। आगे बहनों अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान जननायक, स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बहनों भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के दूर दराज जंगलों, पहाड़ों और गांवों में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित थी। आदिवासी समाज ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संघर्ष के सबसे चमकदार नक्षत्र थे भगवान बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू में हुआ था, जो आज झारखंड में स्थित है। उनका जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने अपने समाज की पीड़ा, शोषण और अन्याय को देखा। अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का लगातार शोषण किया जा रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी, उन पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे और उन्हें अपने ही जंगलों से वंचित किया जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। वे चाहते थे कि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त होकर शिक्षा और एकता के मार्ग पर आगे बढ़े। अपने महान व्यक्तित्व और जन सेवा के कारण लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें धरती आभा अर्थात धरती पिता कहा जाने लगा। बहनों बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया उल गुलान अर्थात महान विद्रोह। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को चुनौती देना ही नहीं, बल्कि आदिवासियों को उनकी भूमि, संस्कृति और अधिकार वापस दिलाना भी था। बिरसा मुंडा ने नारा दिया अबुआ दिशुम अबुआ राज अर्थात अपना देश अपना राज। यह नारा स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट हुए। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। यद्यपि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन बिरसा मुंडा और उनके साथियों के साहस ने सिद्ध कर दिया कि भारत का हर वर्ग स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बिरसा मुंडा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस समय अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन अभी प्रारंभिक अवस्था में था। बहनों उनका संघर्ष केवल आदिवासी अधिकारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई का भी हिस्सा था। उन्होंने भारतीयों को आत्मसम्मान, स्वराज और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। दुर्भाग्यवश अंग्रेज सरकार ने 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बहनों उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बहनों आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने एकता, साहस, स्वाभिमान और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन हमें उनके महान योगदान और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। बहनों भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के नायक नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन हमें राष्ट्र प्रेम, संघर्ष और न्याय के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन है। बहनों, गर्मियों के मौसम में हम सभी का मन करता है कुछ हल्का फुल्का खाने का, और शाम को बच्चे जब खेलने जा रहे होते हैं या सोकर उठते हैं तब भी उनका मन करता है कि कुछ उन्हें हल्का फुल्का खाने के लिए दिया जाए। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं झालपुरी और भेलपुरी। बहनों, झालपुरी उड़ीसा, बिहार और कोलकाता की मशहूर है, जबकि भेलपुरी मुंबई का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसमें मीठी और तीखी चटनियों का स्वाद होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम दो अलग बड़े बर्तन ले लेंगे जिनमें हमें यह सामग्री मिलानी है। बस कुछ चीजों को यदि हम अलग हटा दें तो दोनों में ही काफी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि दोनों में ही मुरमुरे डलते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब चीजें दोनों में डाली जाती हैं, नमकीन आप जिस भी तरह का डालना चाहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो बड़े बर्तन ले लिए हैं जिनके अंदर हम 3-3 कप मुरमुरे डाल देंगे। एक बर्तन में हम बना रहे हैं झालपुरी और दूसरे में हम बना रहे हैं भेलपुरी। इसी के साथ दोनों में ही हम डाल देंगे मूंगफली भुनी हुई, आधा छोटा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच काला नमक, ये सभी सामग्री हम दोनों भगोनियों में डालते जाएंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, 1-1 नींबू का रस, सभी तरह के नमकीन जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या जो आप डालना चाहें। झालपुरी में यहाँ पर जो चना जोर गरम में हम इस्तेमाल करते हैं वह नमकीन भी डाला जाता है, तो यहाँ पर हमने वो भी आधा कटोरी डाला है। बारीक कटा हरा धनिया दोनों में डालेंगे। जिस बर्तन में बहनों आप झालपुरी का मिक्सचर बना रहे हैं उसमें आधा कटोरी उबले मटर, जो आप बटरा वाली मटर होती है, इसको आप रात भर भिगो दे पानी में और सुबह आप हल्का सा नमक डालकर इसे बॉईल कर ले, तो ये और आधा कटोरी काले चने यहाँ पर हमने लिए हैं, ये हम झालपुरी वाले भगोने में डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल भी झालपुरी वाले मिक्सचर में डालेंगे और 1-2 चम्मच आम के अचार का तेल भी हम इसमें डालेंगे, जिसमें कि आप यदि उसका मसाला भी डालना चाहें तो डाल दें। साथ ही हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे झालपुरी में डालने के लिए, जिसमें हमने लिया है भुना जीरा, साबुत धनिया, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इस सभी को हम मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लेंगे और फिर इसे भी डाल देंगे। तैयार है आपकी कलकत्ता की मशहूर झालपुरी। अब जिस बर्तन में हम भेलपुरी डाल रहे थे उसमें हमें बॉयल पोटैटो भी डालने हैं और हरी चटनी और इमली की चटनियां मिलाएं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे खीरे और अनार के दाने भी डाल सकती हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डेढ़ बज चुके हैं। वक्त है कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे महावीर सिंह भदौरिया के गाए लोकगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति।

महावीर सिंह भदौरिया के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए भजन और गजल। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की

जश्न के रस मसाने की रातें, वो चुपचाप आंसू बहाने की रातें, वो एक शख्स

स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए इस नगमे के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है अंतराल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आकाशवाणी प्रसारण संबंधी एक सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। ये कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटियस आधार पर किया जाएगा। ये सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे प्रसार भारती कंटेंट

सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। आकाशवाणी भोपाल से हिंदी, उर्दू अथवा सिंधी भाषा में रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग के लिए इच्छुक आवेदक ईमेल bhopal@prasarbharti.gov.in एवं hopairbhopal@gmail.com पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनिए शहनाई फिल्म का ये गीत, राजेंद्र किशन का संगीत और गीत रवि का।
1: न झटको जुल्फ से पा

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया सहित अन्य देशों से भी आपूर्ति की गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जाँच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों की लंबी कतारों ने शहरवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 6 छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जो आग की चपेट में आ गए। इमारत से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 दमकलें और 3 वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश में मानसून के तय समय से पहले पहुंचने की संभावना बन रही है। केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए गोवा पहुंच चुका है। इसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र में इसकी एंट्री होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और टीन शेड गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत

निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जबलपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति दे दी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने जेम 2026

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि

0: भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
2: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुख तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों

0: हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान

0: पाकिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की

0: बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा में। मैं हूँ आपकी महक दीदी। भारत के विश्व के चमकते हुए भविष्य रेडियो सेट के पास बैठे मेरे छोटे छोटे मित्रों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। आज की बाल सभा बहुत खास है क्योंकि आज हम और आप मिलकर दो बहुत बड़े राज खोलने वाले हैं। पहला राज कि हम खाना, सोना, खेलना, पढ़ाई सब कुछ एक साथ कैसे कर सकते हैं, और दूसरा कि हम पूरी धरती को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो अब सब कान लगाकर सुनिएगा क्योंकि हमारी ज्ञान और मस्ती की गाड़ी शुरू होने वाली है।
1: चुप करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं

0: भप भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी।

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धड़क धड़क लोहे की सड़क धड़क धड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा किसान हरा मैदान।

मंगल की हार, गांव में मेला, भीड़ झमेला, टूटी दीवार, टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक। धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर, कुप्पल डिंडिगल डिंडिगल कुप्पल, मतलीपट्टनम मतलीपट्टनम मतलीपट्टनम मतलीपट्टनम, उंगोल नेर्टिगोल नेर्टिगोल उंगोल, कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव, अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले, रुक रुक रुक।

बच्चों, एक किस्सा सुनाऊं। एक बार आप ही के जैसा एक छोटा सा बच्चा था। उसके सपने में भगवान जी आए और उन्होंने कहा, वत्स, मैं रोज तुम्हें 24 सोने के सिक्के दूंगा, मगर शर्त ये है कि रात तक उन्हें खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो वो गायब हो जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? आप एक एक सिक्का सोच समझ कर अच्छी चीजों पर खर्च करोगे, है ना? ठीक ऐसा ही जादू रोज हमारे साथ होता है। ऊपर वाले ने हम सबको रोज 24 घंटे दिए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस खजाने को कैसे खर्च करते हैं। इसी को कहते हैं समय का सदुपयोग। याद रखो बच्चों, बीता हुआ समय कभी भी लौट कर नहीं आता। कई बार हम क्या कहते हैं, दीदी बस 5 मिनट और रील्स देख लूं, बस 5 मिनट और गेम खेल लूं, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जब मम्मी डांट लगाती हैं, या परीक्षा पास आती है, या होमवर्क नहीं हो पाता हमारा, तब हम घबराने लगते हैं कि हाय अब तो टाइम ही नहीं बचा, है ना? होता है ना आपके साथ भी ऐसा? समय का सदुपयोग करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप खेलना ही बंद कर दें। ना भाई ना, मैं खुद 1 घंटे खेलने जाती हूँ, क्योंकि व्यायाम शरीर को मजबूत रखता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर चीज का एक सही वक्त होना चाहिए। एक छोटी सी ट्रिक बताऊं, रोज सुबह उठकर एक कागज पर लिखो कि आज आपको क्या क्या करना है, जैसे कि 1 घंटा पढ़ाई, 1 घंटा दोस्तों के साथ बाहर खेलना, फुटबॉल, क्रिकेट या छुपन छुपाई, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा समय अपने माता पिता, नाना नानी या दादा दादी के लिए भी निकालें। और छुट्टियों के दिनों में तो 1 घंटा कुछ नया सीखने के लिए निकाला ही जा सकता है, जैसे संगीत, तैराकी, पेंटिंग, क्या कुछ नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है, पहले 1 दिन का टाइम टेबल बनाने की कोशिश करें। फिर एक बार समझ में आ जाए कि कैसे ये करना है, तो हफ्ते भर का या महीने भर का भी टाइम टेबल बनाया जा सकता है। जब आप समय को इस तरह बांट लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपके पास कार्टून देखने के लिए भी पर्याप्त समय बच गया है और पढ़ाई का भी नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ एक और मजेदार टिप बताती हूँ। रोज रात को ये लिखें कि आपने दिन भर में क्या क्या किया। ये डायरी आप खुद को शाबाशी देने के लिए बना सकते हैं, प्रोत्साहन देने के लिए बना सकते हैं कि 1 दिन में आपने कितना कुछ हासिल कर लिया।

0: बच्चों, अगर हम समय का सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम अपने अंदर की कई सारी खूबियों को निखार सकते हैं, दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। आज ऐसे ही कुछ बच्चों की बाल प्रस्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम है तन्वी बालस्कर। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है माँ। सबसे प्यारी मेरी माँ, जग से न्यारी मेरी माँ। मैं हंसती तो वो हंसती है, मैं रोती तो रोती माँ। माँ ममता की मूरत होती, माँ भगवान की सूरत होती। माँ ममता की मूरत होती, माँ भगवान की सूरत होती। बचपन की आँखों से देखो, माँ सबकी ही सुंदर होती। सबसे पहला पाठ पढ़ाती, अपने मुँह का कार खिलाती। जब भी मेरे कदम डगमगाते, झटपट से मुझे गले लगा लेती। उसने अपनी नींदे छोड़ी, मेरे लिए हर कसम भी तोड़ी। मेरे हर ख्वाहिश के खातिर उसने एक एक पाई थी जोड़ी। बच्चों, माँ की मदद करो, माँ का आंचल सुख से भरो। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया तन्वी। बच्चों, अब हमारे साथ एक और प्यारा सा बच्चा है, देखिए आज हमें वो क्या सुनाने वाला है।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियान संकेत सरुंके। मैं हूँ पहली अ में।
0: प्रियान, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
2: एक छोटा बीज जमीन के अंदर था। आंख बंद करके वो सोया रहता था। आंख बंद करके वो सोया रहता था। टुपुर टुपुर बारिश बीच पे गिरती थी। टुपुर टुपुर बारिश

0: वृक्ष में बदल गया, आते जाते लोगों को वो छाव देने लगा। हाँ हाँ छाव देने लगा। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया प्रियान, अब अनाया आपकी बारी।
2: नमस्ते, मेरा नाम अनाया चौरसिया है। मैं आज आपको एक भजन सुनाने वाली हूँ।

0: कैसे। थैंक यू।
1: बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर आवाज है अनाया आपकी। देखा बच्चों, अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो आप अपने अंदर के कवि, गायक सबको जगा सकते हैं। चलिए इसी बात पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बच्चों, अपनी खिड़की से जरा बाहर झांकना। कोई पेड़ दिख रहा है? पौधे दिख रहे हैं? उन पर बैठे पक्षियों को देखो, बाहर चलने वाले जानवरों को देखो, छोटी छोटी चींटियों को देखो, कैसे लाइन बनाकर जाती हैं। देखा है कभी ध्यान से? हमारे माता पिता और दोस्तों के अलावा भी हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, और वो है हमारी प्रकृति। अच्छा ये बताओ, सच्चा दोस्त कौन होता है? वही ना जो बिना कुछ मांगे हमारी मदद करे और हमें खुशियां दे। तो जरा सोचो, पेड़ों से हमें मीठे फल मिलते हैं, ठंडी छांव मिलती है, रंग बिरंगे फूल मिलते हैं, और सबसे जरूरी, सांस लेने के लिए साफ हवा मिलती है। नदी हमें पानी देती है, बदले में प्रकृति हमसे क्या मांगती है? कुछ भी तो नहीं। लेकिन क्या हम सच्चे दोस्त होने का कर्तव्य निभाते हैं? जब हम प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंकते हैं, पानी बर्बाद करते हैं, बिना किसी वजह पेड़ों की पत्तियों को, फूलों को तोड़ते हैं, तो हमारी दोस्त प्रकृति उदास हो जाती है।

भले ही हम आगे बढ़कर अपने दोस्त के लिए कुछ ना करें, मगर उसे चोट भी तो नहीं पहुंचाएंगे, है ना? तो चलो आज की बाल सभा में हम सब मिलकर प्रकृति के सच्चे दोस्त बने। इसके लिए आपको कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, बस छोटी छोटी आदतें बदलनी हैं, जैसे कि अपने जन्मदिन पर या किसी खास दिन पर एक छोटा सा पौधा लगाएं और रोज उसे पानी दें। जब वो पौधा बड़ा होगा ना, तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी किसी छोटे भाई बहन के बड़े होने पर मिलती है। और एक छोटी सी आदत बताती हूँ, पानी की बचत। ब्रश करते समय नल बंद रखें, नहाते समय उतना ही पानी लें जितने की जरूरत हो। पानी की हर एक बूंद कीमती होती है। और हाँ, गर्मी के दिनों में अपनी छत या बालकनी में एक छोटे से मिट्टी के प्याले में पक्षियों के लिए पानी और थोड़ा सा दाना जरूर रखें। जब वो पंछी आकर पानी पिएंगे, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी जो दुनिया के किसी वीडियो गेम में नहीं मिल सकती।

तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की बाल सभा में हमने दो बहुत बड़ी बातें सीखी। पहली, समय हमारा सबसे बड़ा धन है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है। और दूसरी, प्रकृति हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। मुझे पूरा यकीन है कि आज से आप सब अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने घर के आसपास प्रकृति को और सुंदर बनाएंगे। और हाँ, प्रियान, तन्वी और अनाया की तरह आप सब अपनी प्रतिभाओं को प्राथमिकता देंगे। बच्चों, आज की बाल सभा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों और ढेर सारी मस्ती के साथ। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, समय का आदर कीजिए, प्रकृति से प्यार कीजिए। अपनी महक दीदी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबर।

पेश इस घंटे की खास खबरें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिक उससे स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बावजूद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में से संडे ऑन साइकिल अभियान चलाया गया। इसमें हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति होगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युवावाणी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और रात 8:35 पर। पीएम मोदी के 12 वर्ष मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप शाम 6:30 सुन सकेंगे। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीनानाथ खोटे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे और 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा में कलाकार विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीडीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन एआईआर और ओटीटी वेव्स ऐप पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। शुरुआत में आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रताल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सेफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप जीतकर टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह में से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा, अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें। साथ ही हमारा चर्चा का विषय है पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती हैं। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे तपती धरती कटते वन, भारत को बनाना है उपवन विषय पर वार्ता। वार्ताकार है अवनी जैन। साथियों, साथ ही क्रम जीवनालोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचें विषय पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें विषय पर। साथियों, आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में करियर का सही चुनाव जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। अनेक विद्यार्थी केवल दूसरों की देखा देखी या दबाव के चलते किसी क्षेत्र का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल एवं रुचि का सही मूल्यांकन करे और उसी के अनुरूप करियर का चयन करे। दोस्तों, कौशल का अर्थ है किसी कार्य को दक्षता और कुशलता के साथ करने की क्षमता। यह क्षमता जन्मजात भी हो सकती है और अभ्यास तथा शिक्षा के माध्यम से विकसित भी की जा सकती है। वहीं रुचि का संबंध उस कार्य से है जिसे करने में व्यक्ति को आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है। जब किसी व्यक्ति का कौशल और रुचि एक ही दिशा में होते हैं, तब वह उस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाता है। साथियों, करियर चुनने से पहले व्यक्ति को स्वयं का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी की गणित और विज्ञान में अच्छी पकड़ है तथा उसे तकनीकी विषयों में रुचि है, तो वह इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी या अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकता है। उसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को लेखन, साहित्य और भाषा में रुचि है, तो वह पत्रकारिता, अध्यापक, लेखन या अनुवाद के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण और करियर परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही रुचि के अनुसार चुना गया करियर व्यक्ति को कार्य के प्रति समर्पित बनाता है। जब व्यक्ति अपनी पसंद का कार्य करता है, तो उसमें उत्साह, आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ती है। वह चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है और अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर पाता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपनी रुचि के विरुद्ध किसी कार्य क्षेत्र में काम करे, तो उसे मानसिक तनाव, निराशा और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले जहाँ केवल डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी को ही अच्छा करियर माना जाता था, वहीं आज खेल, संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, पर्यटन, उद्यमिता आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अच्छा क्षेत्र माना जाता है और उनमें उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी विशेषताओं को पहचानकर सही क्षेत्र का चयन करना चाहिए। साथियों, करियर चयन केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए। धन जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु कार्य में संतुष्टि और आत्मविश्वास भी उतने ही आवश्यक हैं। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है, उसमें वह अधिक मेहनत कर पाता है और अंततः उसे सफलता, आर्थिक समृद्धि दोनों प्राप्त होती है। दोस्तों, करियर का चुनाव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसे जल्दबाजी या दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं लेना चाहिए। अपने कौशल, रुचि, योग्यता और व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करके ही करियर का चुनाव करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह स्वयं को पहचाने, अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करे। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय पुस्तक है हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं पर चर्चा करने का। साथियों पुस्तक है मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मानी जाती हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार होती हैं, बल्कि हमारे विचारों व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को भी प्रभावित करती हैं। कहा जाता है एक अच्छी पुस्तक जीवन को नई दिशा दे सकती है। वास्तव में पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखती हैं। वे हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाती हैं। दोस्तों पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इनमें विभिन्न विषयों का विस्तृत और उपयोगी ज्ञान संचित रहता है। विज्ञान, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजनीति, कला, संस्कृति जैसे अन्य क्षेत्रों की जानकारी हमें पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। पुस्तकें हमें केवल तथ्यों से परिचित नहीं कराती, बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती हैं। इस प्रकार वे हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों पुस्तकें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर हमें उनके संघर्ष, परिश्रम, त्याग और सफलता से प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अनेक बार एक प्रेरणादायक पुस्तक किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी विकसित करती हैं। साहित्यिक पुस्तकें, कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं हमें नई दुनियाओं से परिचित कराती हैं। इन्हें पढ़कर हमारी भाषा समृद्ध होती है और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। साथ ही हम विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन मूल्यों को भी समझने लगते हैं। इससे हमारे विचार व्यापक और उदार बनते हैं। दोस्तों आज के आधुनिक युग में तकनीकी साधनों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण लोगों को पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। लोग अधिकांश समय डिजिटल माध्यमों पर बिताते हैं। हालांकि इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से जो गहराई, एकाग्रता और चिंतन शक्ति विकसित होती है वह अन्य माध्यमों से प्राप्त नहीं हो पाती। पुस्तकें हमें धैर्यपूर्वक सोचने और विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। साथियों पुस्तकें केवल शिक्षा का साधन नहीं बल्कि वे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती हैं। जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। वे हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं और कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार पुस्तकें हमारे सच्ची मित्र की तरह हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाती हैं। साथियों पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। वे ज्ञान, प्रेरणा, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति को सफल, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सकती है। इसलिए हमें पुस्तकों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन की आदत विकसित करनी चाहिए। वास्तव में पुस्तकें ही वह प्रकाश हैं जो हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती हैं। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय तपती धरती कटते वन भारत को बनाना है उपवन पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार हैं अवनी जैन।
1: तपती धरती कटते वन भारत को बनाना है उपवन। धरती तपती धूप से कटते वन चहुओर, नहीं किसी को सुध यहाँ बनते हृदय कठोर। बनते हृदय कठोर नहीं सुध कोई लेते, काटे वृक्ष अपार इसे बंजर कर देते। कहे विनायक राज धरा सबके दुख हरती, वृक्ष लगाकर आज बचा लो तपती धरती। मित्रों जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज की प्रगति के रूप में

प्रमुख कारण है जो जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण पर एक खतरनाक प्रभाव है, जिससे हम तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण सभी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पिछली शताब्दी में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक होने का कारण यह है कि यह ग्रह की समग्र पारिस्थितिकी को बाधित करता है। यह बाढ़, अकाल, चक्रवात और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर सरकारी समिति IPCC यानी इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में योकोहामा जापान में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन के भयानक खतरों से एक बार फिर आगाह किया है। IPCC ने आसन्न खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि अगर आज हम नहीं संभले तो जलवायु परिवर्तन की मार से कोई अछूता नहीं रह पाएगा, सभी को यह संकट झेलना पड़ेगा। भारत और चीन के लिए तो यह बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि विश्व के एक तिहाई आबादी यहाँ रहती है। वैश्विक तपन से ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों में बाढ़ आएंगी, फिर ग्लेशियरों के सिकुड़ने से नदियाँ सूखने लगेंगी, जल स्रोतों के सूखने से पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। आइए श्रोताओं, अब हम ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभावों पर जोर डालते हैं, जैसे सिंचाई के अभाव और अल्पवृष्टि के कारण खाद्य उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, फसलें उगाना मुश्किल हो जाएंगी, इस कारण अनाज की कीमतें बढ़ती जाएंगी और व्यापक रूप से भुखमरी फैल सकती है, कुपोषण से लाखों लोग प्रभावित होंगे। IPCC ने एक और हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही रास्ता है, वह यह कि विश्व के सभी देश बिना समय बर्बाद किए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हर क्षेत्र में आपातकालीन समस्याएं दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वे मानव स्वास्थ्य पर असर हो या फिर पशु पक्षियों व वनस्पतियों पर असर हो। जैसे जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से कई तरह के संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जिसमें से हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो पाएगी। पशु पक्षियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के कारण यह जीव धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे एवं इनमें से कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण का सीधा प्रभाव हमारे वनों पर पड़ रहा है, जिसके चलते वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में अब सिर्फ 20% ही वन बचे हैं। वनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष वन महोत्सव देश में मनाया जाता है। वन महोत्सव को एक राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया है। वन वह महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। इतनी कीमती चीज पाने के बाद हमें धन्य महसूस करना चाहिए। वन हमें लगातार भोजन, लकड़ी, सांस लेने के लिए हवा और अन्य जरूरी चीजें प्रदान करते रहते हैं। वे तमाम तरह के जीवों के लिए एक घर की तरह है। वन के बिना हम अपने जीवन और अन्य क्रियाकलापों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वनों की कटाई और छटाई के प्रति बढ़ता कदम एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जंगल प्रकृति द्वारा इंसानों को दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफा है। यह कई जीवित प्राणियों के लिए रहने की जगह देता है। इसके अलावा हम वनों से हर तरह के फायदे लेते रहते हैं। वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, झाड़ियां आदि होते हैं। उनमें से कई औषधियां मूल्य प्रदान

0: करते हैं, आश्रय और छाया प्रदान करते हैं, हवा, भोजन, फल, लकड़ी, पानी और दवा प्रदान करते हैं। मित्रों, वनों की कटाई से हमारे पर्यावरण में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। विकास की ये दौड़ में मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से शहरीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग तथा रहने के लिए घर आदि के निर्माण उद्देश्य से वन भूमि की कटाई की जा रही है। मानव का यह कार्य, जो पूरी तरह से विकास के उद्देश्य के लिए केंद्रित है, वन भूमि के विनाश और गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। भविष्य या प्रकृति की चिंता किए बिना मनुष्य पूरी तरह से एक स्वार्थी इंसान में बदल गया है। इस प्रकार पेड़ों की संख्या में दैनिक आधार पर कटौती की जा रही है। इसलिए हमारा मुख्य ध्यान वन इकाई के संरक्षण की आवश्यकता पर होना चाहिए। यह हमारी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हमारी स्थिरता को बनाए रखेगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मनुष्य पर्यावरण से लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर सक्रिय रहा है, लेकिन इस समय अंतराल में पर्यावरण से जिस तरह लिया गया है, उसी प्रकार से लौटाना भूल गया है। इससे प्राकृतिक चक्र में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए दोस्तों, पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं, अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों व संतों के लिए वन तपोभूमि का प्रमुख स्थान रहा है। इन्हीं वनों में महान ऋषियों के आश्रम रहे हैं, जहाँ पर संत एवं उनके शिष्य रहते थे। समाज में इनका विशेष स्थान था, जिन्हें लोग पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से देखते थे। वन मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वन आवरण हटाने से उस क्षेत्र में बाढ़ और अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होगा और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। मनुष्य ने अपनी धन लोलुपता के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की और धीरे धीरे जंगल कम होते गए। फलस्वरूप धरती तपने लगी, अर्थात तापमान बढ़ने लगा। आज आवश्यकता है कि जितने वृक्ष कटने चाहिए, उतने वृक्ष लगने भी चाहिए। तभी हम धरती को हरा भरा बना सकते हैं और तभी हम कह सकते हैं भारत बनेगा उपवन। दोस्तों, तपती हुई धरती को बचाने के उपाय एवं भारत भूमि को वापस हरा भरा बनाने व सजाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार के साथ साथ हम मनुष्यों को भी ये जिम्मेदारी सम्मिलित में लेके चलनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हम सभी को भी पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम से कम करना पड़ेगा, जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके। जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग का असर कम किया जा सकता है। टेक्निकल डेवलपमेंट से भी इससे निपटा जा सकता है। हम ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाएं जिनमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना होता हो, और ऐसे वाहन बनाएं जिनसे कम धुआं निकलता हो। सरकार द्वारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दिया जा रहा है। श्रोताओं, अपनी बात को इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय तपती धरती कटते वन, भारत को बनाना है उपवन पर। वार्ताकार थी अवनी जैन। साथियों, अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों, वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल फोन इस तकनीकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। आज मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, व्यापार और संचार का प्रमुख माध्यम बन चुका है। किंतु इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है, जिसे मोबाइल एडिक्शन या फिर मोबाइल की लत कह सकते हैं। यह समस्या विशेष रूप से बच्चों और युवाओं

में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मोबाइल एडिक्शन से बचना समय की आवश्यकता बन गया है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल फोन का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना और इसके बिना असहज महसूस करना। जब कोई व्यक्ति घंटों तक सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो या अन्य मोबाइल गतिविधियों में व्यस्त रहता है और अपने आवश्यक कार्यों की उपेक्षा करने लगता है, तब यह स्थिति मोबाइल की लत के रूप में उत्पन्न होती है। धीरे धीरे व्यक्ति का अधिकांश समय मोबाइल पर ही बीतने लगता है। दोस्तों, मोबाइल की लत के अनेक कारण हैं। इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता, सोशल मीडिया का आकर्षण, ऑनलाइन गेम, मनोरंजन के असीमित साधन और दोस्तों से लगातार जुड़ने की इच्छा इसके प्रमुख कारण हैं। आज अधिकांश लोग खाली समय में पुस्तकें पढ़ने, खेलने या परिवार के साथ समय बिताने की बजाय मोबाइल का उपयोग करना पसंद करते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनकी लत में बदल जाती है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिरदर्द और नींद की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण भी बन सकता है। कई बार व्यक्ति वास्तविक दुनिया से कटकर आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे सामाजिक संबंध भी कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों पर मोबाइल एडिक्शन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग उनकी एकाग्रता को भंग कर देता है और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट लाता है। मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। प्रतिदिन मोबाइल उपयोग की एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उसका पालन करें। पढ़ाई, भोजन और सोने के समय मोबाइल को अपने से दूर रखें। इसके अलावा खेल कूद, योग, व्यायाम, पुस्तक पठन और रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताने की आदत भी विकसित करें। साथ ही परिवार और मित्रों के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी मोबाइल पर निर्भरता को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनके मोबाइल उपयोग पर उचित निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों को प्रेरणादायक गतिविधियों और स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनका ध्यान मोबाइल से हट सके। दोस्तों, मोबाइल फोन आधुनिक जीवन की एक उपयोगी आवश्यकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें तकनीक का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए। यदि हम समय का सही प्रबंधन करें और मोबाइल पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखें, तो हम एडिक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम।
1: फिल्म ओम शांति ओम से गीत आप सुनेंगे शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और राहुल के स्वर में। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार विशाल शेखर।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म राब्ता से। इस गीत को सुरों से सजाया अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और अमिताभ भट्टाचार्य। संगीतकार हैं प्रीतम।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म भूल भुलैया से। स्वर श्रेया घोषाल और एमजी श्री कुमार के हैं। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार प्रीतम।

दिलजीत दोसांझ और बादशाह के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म क्रू से। गीतकार हैं राज रंजोत और बादशाह, संगीतकार राज रंजोत।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। इस गीत को सुरों से सजाया वरुण जैन और राघव चैतन्य ने। गीतकार हैं इंद्र नील, संगीतकार सचिन जिगर,

0: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
1: Digital download Waves OTT app now and watch for free.

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।

0: कवि हेमंत देवलेकर,
1: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है, हम सब रचनाकार अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाए। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता और हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद भागवत कथा के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजन का विशेष महत्व है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सेफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप जीतकर टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में गीत आप सुनेंगे फिल्म यस बॉस से।
1: कुछ कहे
0: गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीतकार जतिन ललित।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे। फिल्म का नाम और प्यार हो गया। गीतकार हैं जावेद अख्तर। गीत को संगीतबद्ध किया नुसरत फतेह अली खान ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म मृत्यु दंड से। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार आनंद मिलिंद।

अलका याग्निक और अभिजीत के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म जुदाई से। गीत लिखा समीर ने, संगीतकार नदीम श्रवण।

इला अरुण, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म लम्हे से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार शिव हरी।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 साल, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्षों की यात्रा और विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की बढ़ती भूमिका पर। पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण, कृषि, उद्योग, स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे हैं। इन राष्ट्रीय पहलों का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद दीपा जी।
1: और हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अक्षत शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर।
3: नमस्कार।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अजय सर, पहला सवाल आपसे है, हम जानना चाहेंगे कि एनडीए सरकार के 12 वर्षों को आप कैसे देखते हैं?
2: देखिए, एनडीए सरकार के जो 12 वर्ष हैं और मध्य प्रदेश का जो विकास, ये दोनों लगभग एक साथ चल रहे हैं
1: जी।
2: और मेरे ख्याल से ये एक और एक 11 वाली स्थिति ज्यादा है
1: जी,
2: क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार भी कई करीब 115 योजनाएं कल्याणकारी तो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है
1: जी जी।
2: और लगभग एक दर्जन के आसपास जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश के विकास में अपने ढंग से योगदान दे रही हैं। मेरे ख्याल से जो ये योजना जो केंद्र सरकार की है, खासतौर पर मैं उनका जिक्र करूंगा, ये 5 अलग अलग तरह की हैं। तो कृषि और कृषि किसान कल्याण की योजनाएं हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा की योजनाएं हैं, बुनियादी ढांचे को विकसित करने की योजनाएं हैं, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाएं हैं और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं। तो इनमें जो मध्य प्रदेश में काम हो रहा है अलग अलग तरीके से, लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। और खास करके जो किसानों की योजनाएं हैं उसके अंदर तो ये है कि केंद्र सरकार के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से एक थोड़ा योगदान उसमें दे रही है, तो किसानों को इसका दोहरा लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो मध्य प्रदेश का जो तेजी से विकास पिछले कुछ सालों में लगातार देखने को मिल रहा है, उसके पीछे ये है कि जो डबल

0: इंजन की सरकार कहते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो उसी तरह से ये डबल डिब्बे जो हैं योजना के, मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश को।
1: अक्षय जी, आपकी दृष्टि में इन वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं?
2: सबसे पहले तो 12 साल में जो हमने परिवर्तन इसमें महसूस किया है, मोदी जी के 12 साल पूर्ण होने पे, कि उनकी जो नीति रही है वो हमेशा से राष्ट्र प्रथम की नीति पे वो चले हैं कि मेरा देश सबसे पहले। और उसको यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें, जैसे कि आज की अपने चर्चा का विषय है, तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश ने अपने आप अपने विकास को अपनी अपने प्रगति को सबसे आगे रखते हुए और मोदी जी के कार्यकाल में अपने आप को सबसे तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। पहले वो शिवराज सिंह जी की सरकार रही और अभी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, इसमें दोनों ही, और जैसे अभी डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी और कई जगह तो लगभग ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादातर नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी है, कई जगह तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इस समय तो जनता की भी अपेक्षा है और शासन तंत्र भी उस तरह का है कि आपको विकास की गति जो है वो सबसे अधिक होनी चाहिए। और इसमें से जो सबसे बड़ी उपलब्धि, जैसा कि आपका प्रश्न था कि इन 12 वर्षों में हम जो देख रहे हैं जो हुआ है, पहला तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वाला का उल्लेख करना चाहूंगा, केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का, जो बहुत लंबे समय से अपेक्षित था, उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही थी, फिर राज्य अनुकूल राज्य सरकारें हुई, केंद्र की सरकार हुई, तो उन्होंने सबने आपस में बैठ के समझौता किया और उस पर हम आगे बढ़े हैं। हाईवे एक्सपेंशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत तेजी से हम उस पर काम किया है, बहुत सारे एक्सप्रेसवेज मध्य प्रदेश में बनने शुरू हो गए हैं और वो केंद्र सरकार के मदद से ही उसमें हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। इसके अलावा रेलवे को लेकर काफी बड़ा एक मॉडर्नाइजेशन कैंपेन पूरे देश भर में चला है, इसमें भोपाल से दिल्ली, इंदौर, नागपुर इस तरफ का पूरा जो, और वंदे भारत का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे प्रदेश में शुरू हुआ है, तो इससे नेटवर्किंग में रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क, इन दोनों ने बहुत बड़ी उसमें हमें मदद करी है। एविएशन के सेक्टर में भी कई नए हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स खुले हैं, उस अभी कई वर्षों में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पीएम श्री हेली सर्विसेज, हेली पर्यटन सेवा शुरू, जिन्होंने धार्मिक केंद्रों को जोड़ने का प्रयास किया है, तो ये सब चीजें जो है बहुत मध्य प्रदेश के विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रही
0: है। एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा मैं, कि मध्य प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी ये केवल मध्य प्रदेश को नहीं जोड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में बसा हुआ है तो हम अपने साथ और कई राज्यों को भी जोड़ते हैं, तो मतलब ये जो क्रॉस कनेक्शन है राज्यों का ये भी अपने आप बढ़ता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे ख्याल से, कि हम केवल अपना ही विकास नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने साथ दूसरे राज्यों को भी लेके चल रहे हैं,
2: कैटलिस्ट के रूप में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हृदय प्रदेश में केंद्रित हैं, तो हमें कैटलिस्ट के रूप में पूरे देश के विकास में कैटलिस्ट के रूप में।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, निश्चित तौर पर हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अजय सर, विकसित भारत 2047 का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है और कहा है कि हम को प्रगति करनी है ताकि हम विकसित हो जाएं 2047 तक, जो अभी तक प्रगति हुई है उस दिशा में आप उसे कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है
1: जी।
0: 2047 का मतलब ये कि भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे
1: जी।
0: तो 100 साल में भारत को दुनिया के 4-5 जो विकसित देश हैं उसकी पंक्ति में लाना, उसका मतलब ये है कि हमारा सामाजिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, हमारा जो है वो आर्थिक विकास भी उस तरह से होना चाहिए, स्वास्थ्य भी है इसके अंदर, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, तो तमाम इन सारे पहलुओं को लेकर के और उस स्थिति में आए कि हम एक देश सुखी और समृद्ध देश, जिसके बारे में कह सकते हैं कि जहाँ पर रहने की जीने की जो श्रेष्ठतम सुविधाएं वहाँ पर हों, भारत उस श्रेणी में आए जैसे कि कुछ दुनिया के देश 4-5 इसमें गिने जाते हैं, तो वो बड़ा लक्ष्य है। एकदम ये हासिल करना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि उस दिशा में ये धीरे धीरे लगातार देश आगे बढ़ रहा है और उसी को चूंकि बड़ा टारगेट है तो संसाधन भी उतना ही चाहिए, तो सरकार के पास जितने संसाधन है उसके हिसाब से जो कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत करने की कोशिश कर रहा है और मध्य प्रदेश का उसमें योगदान है, तो हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अगर इसी गति से काम होता रहा तो मेरे ख्याल से वो लक्ष्य प्राप्त करना कोई असंभव नहीं है।
1: सही कह रहे हैं सर। अक्षय सर, युवाओं की भूमिका आप कैसे देखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है इन सब में युवाओं की भूमिका?
2: सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी का सबसे ज़्यादा फोकस उनके ऊपर रहता है और वो हमारे जो डिविडेंट यूथ डिविडेंड की बात करते हैं
1: जी जी
2: कई बार इस तरह की, हमारे पास सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे
1: जी,
2: पास
1: जी,
2: में
1: जी।
2: तो उसको लेकर ही जो डिजिटल इंडिया का उन्होंने कैंपेन शुरू किया है, मेक इन इंडिया का कैंपेन शुरू किया है, ये युवाओं को केंद्र में रख के किया है, क्योंकि वो युवा शक्ति ही इसके पीछे ऊर्जा है। इसके कारण से हम अपने देश में भी रोजगार भी सृजन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उनके उस रोजगार के आधार पर हम अपने देश को एक एक, एक प्रगति के पथ पर, जिस 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम कल्पना कर रहे हैं भारत की, उसकी यदि दिशा में हमें बढ़ना है तो युवाओं को सबसे पहले शक्ति प्रदान करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार द्वारा, वो निश्चित रूप से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया का वाला जो कैंपेन है पूरा, उनको जनधन योजना के माध्यम से रोजगार के, उद्योग के अवसर प्रदान करने वाले जो कदम है, निश्चित रूप से उनको सशक्त करें, युवाओं को सशक्त करेंगे और वो देश के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे।
1: बिल्कुल, वाकई तो कह सकते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में। अजय सर, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका मध्य प्रदेश पर क्या असर देख रहे हैं आप?
0: देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि चूंकि 11 योजनाएं जो मेरी जानकारी में हैं, वो उसका लाभ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मिल रहा है। अगर हम उसे अगर मोटे तो एक मोटा मोटी बात हम बात देखें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो किसानों को सीधे आर्थिक सहायता सालाना जो है 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है, तो इससे ही मध्य प्रदेश में करीबन 81 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसान की जो आय है वो फसलों पर निर्भर करती है, उसको पहले लगाना पड़ता है, फिर फसल आती बेचता है तो पैसे उसके हाथ में आते हैं। लेकिन इस फसल आने के बीच के दौर में जो है हाथ खर्चे के लिए पैसे कई बार उनको दिक्कत आती है, तो ये जो पैसा है भले ही ये राशि उतनी बड़ी ना हो लेकिन ये भी उनके लिए बहुत मायने रखती है।
1: बिल्कुल,
0: और खास बात यह है कि केंद्र सरकार तो दे ही रही है 4,000 रुपए जो है वो मध्यप्रदेश सरकार भी इसमें ऐड कर रही है, तो जो 6,000 रुपए सरकार दे रही है केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश सरकार जो है किसान कल्याण योजना के तहत जो है वो 4,000 रुपए और दे रही है, तो किसान तक 10,000 रुपए सालाना जो है ये नकद राशि पहुंच रही है। तो मेरे ख्याल से किसान, खासकर जो गरीब किसान परिवार छोटे किसान हैं, उनके लिए 10,000 रुपए की राशि बहुत मायने रखती है। इसके अलावा जो फसल बीमा योजना है, अभी तक तो ये था कि पहले फसलें उजड़ जाती थी, खत्म हो जाती थी मौसम के कारण, आगजनी के कारण या किसी और कारण से भी, तो किसान तो बुरी तरह बर्बाद हो जाता था। तो कम से कम फसल बीमा योजना से इतनी राहत तो है कि उसके बदले में से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। मध्य प्रदेश में भी इससे करीबन 14 लाख से ज़्यादा किसानों को फायदा मिल रहा है, और अभी तक जो जब से ये योजना चल रही है करीब 26 करोड़ से ज़्यादा पैसा बांटा जा चुका है किसानों को, तो ये किसानों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर एक और बड़ी योजना आयुष्मान भारत वाली है
1: जी जी,
0: क्योंकि भोजन के बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है स्वास्थ्य, और ये सभी के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है। तो गरीब परिवारों को जो है वो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराना मुफ्त में, ये मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती है। तो और इसमें अलावा 70 के ऊपर तो सरकार ने जो है 5 लाख का टॉपअप भी दे रखा है, तो सभी के लिए है 5 लाख तक, बाकी का जो है वो तो खैर फिर भी एक निश्चित आय वर्ग के लिए है, लेकिन 70 के ऊपर सभी के लिए है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी सौगात है। और ये सरकार की संवेदनशीलता को जाहिर करती है कि भाई लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी चिंता है, और उनको मुफ्त में या बहुत कम पैसे में इलाज कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये उसका है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हमने प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना है, उसके अंदर जो है वो सरकार बहुत नाम मात्र के प्रीमियम पर जो है वो 18 से 50 साल के लोगों का बीमा करती है
1: जी जी।
0: और जब भी मुसीबत में आए तो उसको जो है 2 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है। तो ऐसी अलग अलग कई योजनाएं हैं, उसका सीधा सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो वेलफेयर स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी सरकार जो कहते हैं, वो उसको कैसे काम करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये उसका उदाहरण है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। अक्षय सर, निवेश और उद्योग की बात करते हैं तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, किस तरह से हम लोग एमएसएमई, स्टार्टअप इन सब में आगे बढ़ रहे हैं?
2: जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों में इन्वेस्टर समिट्स का आयोजन किया गया, और इस बार तो रीजनल समिट्स का भी आयोजन, लगभग 7-8 स्थानों पर रीजनल समिट्स का भी, तो समग्र मध्य प्रदेश को उसमें शामिल करते हुए वो क्षेत्रीय स्तर पे भी हो, संभागीय स्तर पे भी हो, और पूरे मध्य प्रदेश को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पे रखने वाली बात हो, तो उस रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा काम किया है और उसमें उनको अच्छा प्रतिसाद भी मिला है। कई बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी किया है और केंद्र सरकार ने भी उसमें बहुत अपनी भूमिका निभाई है। एक आपने देखा होगा कि रीवा में एक अल्ट्रा मेगा सोलर
3: प्लांट
2: लगाया गया, 750 मेगावाट का लगाया गया है, तो उसमें वो उसकी एशिया के प्रमुख सोलर प्लांट्स में उसकी गिनती होती है, तो उसने हमें वैश्विक मानचित्र पे अपने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने का एक मौका प्रदान किया है। ये सब इस तरह के जो प्रकल्प हैं वो सारे मध्य प्रदेश में जो एमएसएमई सेक्टर भी है और एसएमई सेक्टर है, इन सबको एक एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, उनको शक्ति प्रदान कर रहा है और सरकार ने जितनी अपनी योजनाओं में उनको सहूलियत देने का प्रयास किया है, अपने उनको जमीन आवंटन के लिए है, उनको बिजली आवंटन के लिए है, पानी है और कुछ सब्सिडीज हैं,
3: बिल्कुल
2: तरह तरह की सब्सिडीज नए उद्योग लगाने के लिए दी जाती है, फिर वो हर क्षेत्र में हो, सेमीकंडक्टर में हो या उसमें फ्लोरिकल्चर में हो या दूसरे किसी उद्योग में लगाना चाहते हो, युवाओं को उसके लिए प्रोत्साहित किया है, तो एक ऐसा ऐसा वातावरण बनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि इसमें मध्य प्रदेश के उद्योगों को, देश के और विदेश के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आके उद्योग लगाने में सहूलियत मिले।
3: बिल्कुल कह सकते हैं कि औद्योगिक विकास के अनुकूल पूरा वातावरण प्रदेश में बनाया गया है ताकि जो बाहर उद्योगपति हैं वो हमारे यहाँ आए तो उनको हर तरह की फैसिलिटीज दी जा सके। सर, डिजिटल इंडिया अभियान का देखा जाए तो मध्य प्रदेश पे वोकिल सर क्या असर पड़ रहा है?
0: देखिए, डिजिटल अभियान का सबसे बड़ा दो उदाहरण यही है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जिस तरह तेजी से बढ़ा है, मेरे ख्याल से दुनिया में शायद सबसे नंबर वन पर भारत पहुंच गया है, जिसमें इतने अभी शायद अभी पढ़ रहा था मैं 30 अरब करीबन ट्रांजेक्शन हुए, मतलब ये है कि अनपढ़ आदमी भी जो मोबाइल ऑपरेट कर लेता है और वो डिजिटल ट्रांजेक्शन से जो है पैसा पैसे का लेन देन कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस देश में साक्षरता अभी 100% नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, वहाँ अगर लोग इतने मॉडर्न तरीके से, जो शायद अमेरिका में भी नहीं होता है आज की तारीख में, और इस पर जा रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से सरकार की भी सफलता है, सरकार की संकल्प शक्ति की सफलता है कि हमने जो है उसको लागू करके दिखाया और वो अब अमल में आ रहा है। दुनिया इसको लेकर के चकित है कि भारत जैसे देश में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन के कैश ट्रांजेक्शन घट गया, उससे एक सबसे बड़ा फायदा हुआ कि सर रिजर्व बैंक को नोट भी कम छापने पड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ा फायदा ये भी है। और दूसरी बात ये है कि हम जिस आधुनिक जमाने में जा रहे हैं, वो जब AI का जमाना आ रहा है, शुरू भी हो गया है, तो उस तरीके से अगर भारत उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल से हम उस स्थिति का भी मुकाबला कर पाएंगे। एक तरह से ये एजुकेशन है, एक तरह का डिजिटल एजुकेशन की तरह मैं इसको देखता हूँ कि एक शुरुआत है ये, कि आगे और जब जटिल चीज़ें सामने आएंगी तो लोग उसको भी धीरे धीरे अपनाएंगे।
3: बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं, हाल ही में खबर आई थी कि मई के महीने में सबसे ज्यादा अभी तक UPI के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड बना है अपने आप में। डिजिटल इंडिया में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अक्षत सर, देखा जाए तो सामाजिक जो कल्याण की योजनाएं हैं उनमें कैसे देखते हैं कि उनका जो केंद्र सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं उन किस तरह से मध्य प्रदेश में फॉलो की जा रही हैं?
2: उसको पूरी तरह से उसको मध्य प्रदेश में उनको लागू किया गया है। हम अगर जनजाति समाज को लेकर ही देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री ने ही शेडोल से इसका शुभारंभ किया था, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन उन्होंने किया था, और जिसमें कि ग्रामीण अंचलों में जो सैकड़ों कई लोग हैं जिनको क्या वंशानुगत इस तरह की बीमारी होती थी, उससे मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था और उसमें बहुत सफलता भी मिली है। हाल ही में हमने राज्यपाल जी को भी उसमें बहुत सक्रियता से भाग लेते हुए देखा, तो ये एक बहुत बड़ा अभियान केंद्र के स्तर पे और राज्य सरकार के स्तर पे चलाया गया, जिसका कि मैदानी स्तर पे हमने उसका पालन होते हुए देखा, उसके परिणाम भी आते हुए देखे। कई तरह की जिस तरह की उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में जो पहले चूल्हे जलते थे उसके द्वारा गैस के कनेक्शन मिलने लगे हैं, तो अब उससे धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात मिली है, प्रदूषण से भी निजात मिली है, और एक एक आत्मविश्वास का भाव जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और जनता के बीच में आया है इस योजना के माध्यम से भी। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से बहुत जो गरीब व्यक्ति था वो भी अपने घर का सपना साकार होते हुए देख रहा है। तो ये सब योजनाओं के माध्यम से समाज में एक जो विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है उसने भारत को एक

0: नई मजबूती प्रदान करी है, और जिस तरह की मजबूत बुनियाद हमें विकसित राष्ट्र के लिए चाहिए,
1: जी जी
0: उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सर। अजय सर, उपलब्धियों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, साथ ही उपलब्धियां जब आती हैं तब चुनौतियां भी आती हैं, और आगे किन-किन क्षेत्रों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है?
2: देखिए, कुछ बुनियादी बातें हैं जिसमें काम तो हो रहा है, लेकिन अभी और काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि पीने का पानी, हालांकि प्रधानमंत्री जो है वो जल मिशन के तहत काफ़ी काम हुआ है और काम हो भी रहा है, लेकिन अभी भी ये बड़ी चुनौती है कि हम, जैसे कि कभी अटल जी ने कहा था कि हर हर गांव के हर व्यक्ति को साफ पानी उपलब्ध कराना हमारे लिए बड़ी चुनौती है, तो वो चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। तो जाहिर है कि उसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, काम हो रहा है, लेकिन उसको और तेज़ गति से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 25 सालों के अंदर मैं भारत में लगभग हर घर, हर व्यक्ति को साफ पानी हर परिवार को मिले, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको न सिर्फ उस तरह के जो है वो जल संचय भी करना पड़ेगा और जल जल वितरण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तो उस दृष्टि से काम होना है। दूसरी बात आवास वाली बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास तो सरकार दिला ही रही है, शहरी और ग्रामीणों को, लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इससे वंचित हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी कोई सरकार उसको लेकर आएगी और उनको भी ध्यान रखा लिया जाएगा। और तीसरा मुद्दा रोजगार का है, तो रोजगार के लिए भी सरकार जो ऐसे वो जो स्व सहायता समूह वगैरह इस तरह की योजनाएं लेकर के आ रही है, ताकि खासकर महिलाओं के लिए
1: हर जिलों में रोजगार मेले भी आयोजित
2: वो भी
1: किए
2: है।
1: जा
2: दूसरे वो अंत्योदय जो है रसोई योजना है, उस तरह के तहत हर 5 रुपए में भरपेट थाली भोजन लोगों को तो उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी है। तो काम तो काफी हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि चुनौतियां तो हमेशा रहेंगी, जैसे काम जैसी उपलब्धियां बढ़ेंगी तो नई चुनौतियां भी सामने आएंगी।
1: चुनौतियां तो आएंगी, उपलब्धियां आ रही हैं, क्योंकि तो चुनौतियों का सामना करने के लिए देश और प्रदेश लगातार तैयार हैं। अक्षत सर, देखा जाए तो मध्य प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य में अपना और किस तरह से योगदान दे सकता है?
0: जैसा कि शुरुआत में हमने बातचीत करी कि मध्य प्रदेश जो है वो हृदय प्रदेश है हमारे देश का, और सभी जो कनेक्टिविटी है के माध्यम से भी, एक लॉजिस्टिक हब के माध्यम से भी हम जो है भारत के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए जो औद्योगिक संरचना, औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, उस दिशा में हम आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत सारा काम करने की
1: जरूरत है।
0: आवश्यकता है उसको, और जिस तरह के महाराष्ट्र में या गुजरात में जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पहुंचता है, वैसा एक हमें उसके लिए कुछ हमारे पास में वो भी हैं, क्योंकि हम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, वो बाकी सारे स्टेट्स के पास में समुद्र का जो किनारा है वो उनको व्यापार करने के लिए सहूलियत प्रदान करता है, लेकिन मध्य प्रदेश को हमें अपनी इसी जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो अपने आप को लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप करने की जो एक प्रतिबद्धता है, या हमारी जो एक नेचुरल पोजीशन हमें मिली हुई है, उसको हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम पूरे देश को एक कैटलिस्ट के रूप में विकास की गति पे आगे बढ़ाने में प्रयास कर सकते हैं। और जैसा अभी मध्य प्रदेश के सरकार ने भी अपने एक एक और वो दिया था, स्लोगन दिया था, विरासत भी विकास भी, तो हम विरासत को सहेजते हुए विकास की राह में आगे बढ़ेंगे। ये जो सरकार की प्रतिबद्धता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पूर्व में हमारे जितने जो हमारे मानबिंद ऐतिहासिक या सांस्कृतिक मानबिंद रहे हैं, उनको सहेजते हुए हम विकास के पथ पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा कि हमारे जो पिछले दिनों कल्चरल सांस्कृतिक केंद्र है, या हमारे धार्मिक केंद्र है, महाकाल लोक है, या राम राजा सरकार का लोक है, ऐसे अनेक धार्मिक स्थानों को भी पर्यटन के रूप में बहुत बड़े स्तर पे स्थापित किया गया। और अब देखिए कितना उज्जैन में, महाकाल में कितना बड़े संख्या में पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं। तो इस तरह की धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर भी हम विकास की गति को बढ़ा सकते हैं, और उससे पूरा प्रदेश को फायदा पहुंचता है।
1: बिल्कुल, तो पर्यटन जो है मध्य प्रदेश को विकसित बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
0: जी
1: जी अजय सर, जो युवा है 2047 तक भारत को विकसित होना है, वो अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं, आपका संदेश?
2: देखिए, युवाओं का तो क्या है कि अलग अलग तरीके से, बल्कि दे ही रहे हैं, बल्कि मैं क्या दे सकते हैं क्या, बल्कि अलग अलग तरीके से दे ही रहे हैं, चाहे वो उद्योग की दृष्टि से हो, खेती की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से हो। तो ये तो अभी आज की तारीख में भारत में करीब 35 करोड़ युवा हैं।
1: जी जी
2: हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 20 साल बाद ये अधेड़ हो जाएंगे ये सब।
1: जी जी
2: तो वो भी एक बड़ी चुनौती है, जो आज जैसे जापान जैसे देश इसका सामना कर रहे हैं, हमें उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: तो ये दोहरी चुनौती है, अभी जो अलग अलग तरीके से लोग योगदान दे रहे हैं, भारत को अगर इतनी

0: जैसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति आज की है, उसमें भी रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़े आए कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से काफी बेहतर रही है,
1: 7.8%।
0: हाँ, तो वो इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों का भी हमने मुश्किलों को झेला है और अपनी जो रफ्तार को आर्थिक विकास की बनाए रखा है। तो और ये युवाओं के दम पर ही संभव है, बगैर उसके तो हो नहीं सकता है। तो ये समस्याएं तो हैं उसके, लेकिन फिर भी ये है कि मेरे ख्याल से युवा अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं, चाहे वो आर्थिक विकास दृष्टि से हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से हो, खेलों की दृष्टि से हो, खेल में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, विज्ञान की दृष्टि से आगे हो, या और भी तमाम जो है अलग अलग क्षेत्र जितने भी हैं उसके अंदर लोग अपने अपने ढंग से योगदान दे रहे हैं। और भारत दुनिया के अंदर एक बड़ी चुनौती दूसरे देशों के लिए बना हुआ है, ये हमारे लिए संतोष की बात है।
2: जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्षय सर, आपका क्या संदेश है?
1: संदेश मतलब जिस तरह के बताया अजय जी ने कि युवा अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले जो समय में जो उम्र का असर उसमें आएगा उसको लेकर हमें आज से योजना बनानी पड़ेगी, तो उस दिशा में सभी के प्रयास जारी भी हैं।
2: तो श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में मध्य प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आधारभूत संरचना, कृषि उद्योग, डिजिटल सेवाओं और सामाजिक विकास के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अजय सर और अक्षत सर, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
0: धन्यवाद दीपा जी।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
2: और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीएम मोदी के 12 वर्ष, मध्य प्रदेश बना चीतों का घर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट।
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

性。भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मेरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से थोड़ी ही देर में यानी 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। इसी के अंतर्गत 7:30 पर प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें आपके साथ होंगे डॉक्टर दीनानाथ धोते। विषय रहेगा मानसून के आगमन पर बगीचे एवं उद्यानिकी फसलों में सामयिक कार्य। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप डायल कर सकते हैं नंबर 2660902। साथ में भोपाल का एसटीडी कोड आपको लगाना है 0755। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में रात 8 आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। दिल्ली केंद्र से ही रात 10:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन आप सुनेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। सोमवार 8 जून को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। 8:30 प्रसारित होगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। 9:15 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। इसमें कलाकार आशा शर्मा के स्वर में अवधि लोकगीत आप सुनेंगे। 9:30 प्रसारित होगा उर्दू कार्यक्रम आईना। इसमें विशेष आप सुनेंगे सबखान का कलाम। ठीक 10 होगी जिले की चिट्ठी।

10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत सागर। ये कार्यक्रम भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रित रहेगा। 10:30 बजे आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग माला का। इसमें कलाकार रसिक लाल अंधारिया के स्वर में ख्याल गायन आप सुनेंगे। राग होगा कोमल ऋषभ असावरी। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में ही ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा सुनेंगे 7:21 पर। इसमें विशेष आकर्षण होगा लोक रंग।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में सुबह 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी प्रसारण के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष फोन आउट कार्यक्रम। फिल्म संगीत होगा दोपहर 2 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय रहेगा दोपहर 2:30 बजे। 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनेंगे रेडियो धारावाहिक जंग लगी तलवार का तीसरा भाग। दिन के ठीक 1 बजे प्रसारित होगा कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। इसमें डॉक्टर अभिनव साठे की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय रहेगा फिजियोथेरेपी से दर्द प्रबंधन के आधुनिक तरीके। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगा। 1:30 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। इसमें कलाकार आशीष श्रीवास्तव और साथियों के स्वर में बुंदेली लोकगीत आप सुनेंगे। 1:45 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। इसमें कलाकार राजेंद्र पारिक के स्वर में भजन और गीत आप सुनेंगे। शांतिकालीन सभा में शाम के ठीक 5:02 पर प्रसारित होगा युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भोपाल द्वारा शासकीय सरदार वल्लभ भाई पटेल पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल में 5 जून 2026 को आयोजित तत्कालीन भाषण प्रतियोगिता के संपादित अंश आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर, शाम 6:30 बजे, रात 8:35 पर। 6:45 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन। 6:40 पर सुनेंगे आरएनयू भोपाल का कार्यक्रम आजकल। 9:30 बजे दिल्ली केंद्र से पब्लिक स्पीक आप सुनेंगे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश रात 10 बजे। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ,
5: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर। और प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मॉनसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेश है आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत

0: चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विश्व खाद्य सुरक्षा पर यह संदेश देते हुए कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने इस विशेष दिवस पर प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए हम सब खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और इसके पोषक तत्वों के मानकों के प्रति सदैव जागरूक रहें। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, जहाजरानी, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, उर्वरक, महत्वपूर्ण खनिज, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर भी अपने विचार साझा किए। साथ ही बहुपक्षीय समन्वय को आगे बढ़ाने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। इंदौर में 9 से 13 जून तक आयोजित होने वाले ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण कृषि सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने रेसिडेंसी में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में सम्मेलन से जुड़ी व्यवस्थाओं, सुरक्षा, आवागमन, आवास, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन तथा अतिथियों के स्वागत सत्कार सहित अन्य सभी आवश्यक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा, कृषि अनुसंधान, सतत कृषि विकास, आधुनिक तकनीकों तथा किसानों की आय वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। आयोजन के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ चर्चाएं, प्रस्तुतियां तथा अनुभव साझा करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों वक्त है कब छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचार में पुनः आपका स्वागत है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में आयोजित 2 दिवसीय निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर के आज दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा में सेवा का महायज्ञ दूसरे दिन भी जारी है। चिकित्सकों की टीम पूरी निष्ठा से हर नागरिक की जांच और उपचार में जुटी है। श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसको वैक्सीन के माध्यम से पूरी तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ एक सामाजिक सख्ती का जागरण करना पड़ेगा।
3: अलग अलग ढंग के कैंसर देखे, जो तथ्य है वो बेहद चिंताजनक। अब अगर 2598 में से 586 पॉजिटिव जिनको निश्चित कैंसर है निकल रहा, 254 सस्पेक्टेड है, तो आप कल्पना करो कि बीमारी कितने भयानक ढंग से फैल रही है। हो सकता है कई लोग नहीं आए हो और नहीं आ पाए। सबसे ज्यादा है मौके कैंसर वाले। ये मौका कैंसर क्यों होता है? ये अपने आप नहीं होता, ये आफत हम खुद बुलाते हैं। ये होता है तंबाकू से। इलाज कराते कराते परिवार टूट जाता है। कई बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। कई बच्चे अपने पिता का अस्पताल के बाहर इंतजार करते हैं। बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं।
1: भारत सरकार खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना मिशन के तहत चलाए जा रहे फिट इंडिया

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद् भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। ये समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं और सबके जीवन में सद्भाव एवं आत्मिक शांति का संचार करते हैं। साथ ही ये मनुष्य को उसके कर्तव्यों और मानव सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला दिव्य ज्ञानामृत है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। भारतीय महिला खिलाड़ी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 18 गोल करने की उपलब्धि भी हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी भारतीय महिला फुटबॉल टीम को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय टीम की सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। प्रदेश में मॉनसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार केरल से देश में प्रवेश करने वाला मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 9 और 10 जून को प्रदेश के उत्तरी जिलों में हीटवेव चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम में संचालित देश के पहले महिला बंदी स्व सहायता समूह को डेयरी से व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया गया है। ये पहल महिला बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने का अनूठा प्रयास माना जा रहा है। खंडवा में प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने खालवा में लगभग 1,20,00,000 रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गए सैलरी?
2: हाँ।
1: आ? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। ग्रामीण श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को रजनी बहन की राम राम। देखो भैया बहनों, अपन देख ही रहे हैं कि अभी टाइम चल रहा है भैया गर्मी के मौसम को, और भैया गर्मी भी बहुत पड़ रही है ना। तो भैया जो ऐसी गर्मी में भैया अपने स्वास्थ्य को भैया अच्छा विशेष ध्यान रखना है, जैसे भैया अपन स्वस्थ रह सके। एक तो का है कि भैया खूब पानी पिए, संतुलित भोजन करे, अपने बच्चन को भी भैया अच्छे स्वास्थ्य के प्रति उनकी अच्छी से देखभाल करें। अपने जो पालतू पशु हैं बिनको भी भैया अच्छे ध्यान रखना है, जैसे वे भी स्वस्थ रह सके। और देखो भैया रो अपन देख ही रहे हैं कि चार टाइम गर्मी पड़ रही है, और अपन सभी देख ही रहे हैं कि जो जल को स्तर है वो भी बहुत ही कम हो जाऊत है। तो भैया कितंग कितंग के क्षेत्र में तो भैया पीवे के पानी के लाने भैया बहनों को बहुत ही लंबी दूरी तय करना पड़ता है। और केवे को जो ही मतलब है कि भैया पानी को व्यर्थ नहीं पाने हैं, काहे कि अपन को जितनी जरूरत है उतनी को उपयोग करना है। और देखो भैया रो आधुनिक

स्मार्ट तरीके से जैसे ड्रिप इरिगेशन सेंसर आधारित नल, आधुनिक वाटर मीटर और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल संचयन के माध्यम से अपन आसानी से हजारों लीटर पानी बचा सकते हैं। यानी भैया जी आधुनिक विधियाँ हैं भैया आज के समय में, कि जैसे भैया अपन जो आने वाले मौसम बरसात के मौसम में भैया जो पानी को बचत कर सकते हैं व को संरक्षण कर सकते हैं। और भैया अपन अभी से पानी जो भैया अपन को जितने उपयोग है उतने कई बार को अपन को आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना है। तो भैया जी ड्रिप इरिगेशन से जो पौधन की जड़ों तक बूंद बूंद करके पानी पहुँचावे की सल भैया सबसे बेहतरीन अच्छा तकनीक है, और जैसे वाष्पीकरण और पानी की बर्बादी लगभग 90% रुकी जाऊत है। तो भैया रुचि कितनी अच्छी विधि है, और स्मार्ट स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा ये तकनीक मौसम के पूर्वानुमान मिट्टी की गर्मी को भाप के पानी छिड़काव करत है। और मल्चिंग की बात करें तो भैया जे पौधों की जड़ों के आसपास की सूखी घास या पत्तियों की परत बिछावे से मिट्टी की नमी बनी रहते हैं और बार बार पानी देवे की आवश्यकता कम होते हैं। और देखो भैया बहनों आज के समय में विज्ञान ने बहुत ही भैया तरक्की कर ली है, जैसे भैया कई चीज़ें हैं जो भैया आसान हो गई हैं और भैया बचत भी हो जाते हैं। तो नई नई तकनीक से भैया माध्यम से अपन हर जगह को उपयोग करके भैया अपन पानी की बचत कम कर सकते हैं। और देखो भैया बहनों आज के समय में RO और JAC जिनको भैया उपयोग भी ज़्यादा कराते हैं, तो जा से कहा है कि जाके पानी को भी भैया व्यर्थ नहीं बहानो है, कहे कि RO के पानी भैया फिल्टर होते हैं और कछु भैया पानी व्यर्थ हो जाते हैं। तो भैया वो व्यर्थ वाले पानी को अपन को सही उपयोग करना है, यानी भैया पुनर्उपयोग कर सकते हैं। जैसे वाटर प्यूरीफायर, RO और एयर कंडीशनर भैया जे सबके लाने भी वाले व्यर्थ पानी को घर के कामन में अपन उपयोग कर सकते हैं, जैसे पोछा लगा सकते हैं, बर्तन धोना, पौधन में पानी डालना, जे कामन में जे पानी को उपयोग करके आप भैया ऑटोमेटिक स्टोरेज टैंक और साइफन सिस्टम का उपयोग भी कर सकते हैं। और देखो भैया रो अपन देख ही रहे हैं कि अब आवे वाले मौसम बरसात में अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से छतों के पानी को आधुनिक फिल्टर के माध्यम से जमीन के अंदर पानी को टैंक बना के बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। और भैया ये तकनीक भूजल स्तर को बढ़ावे में बहुत ही अच्छी सहायक होते हैं। तो भैया बहनों जे आधुनिक विधियाँ अपना के अपन पानी की बचत कर सकते हैं, जैसे भैया अपन और आगे के समय में वो पानी को उपयोग कर सकते हैं और काम में भी ले सकते हैं, तो भैया जाको सही उपयोग भी कर सकते हैं। और भैया बहनों अपन अभी चर्चा कर रहे थे गर्मियों में पानी की बचत हेतु आधुनिक विधियाँ जा विषय पे, और भैया अपन कछु मनोरंजन भी कर लेते हैं। तो भैया हम मनोरंजन के लाने अपने भैया को लाए हैं जे बढ़िया से लोकगीत जी को गाव भाव है राजू पटेल और साथी।

0: रहते राज पटेल और साथी को गाभा जे लोकगीत। और देखो भैया बहनों, हम आपको कोरोना कोनो विषय पे भेंट वार्ता सुनवात रहते हैं। जी को सुन के आप सभी भैया बहन बेबातन को पे खेती किसानी में जोड़त रहते हैं, जैसे भैया लाभ सुई मिलत रहते हैं। तो भैया रो आज भी हम आपको बहुत ही अच्छी विषय पे जे भेंट वार्ता सुनवान जा रहे हैं। जी को विषय है वर्मी कंपोस्ट का महत्व एवं उत्पादन तकनीक, और जा विषय पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, और इनसे बता रहे हैं अपने भैया समर्थ अग्रवाल। तो भैया बहनों जी, भेंट वार्ता अपन पुनः प्रसारित करी जा रही है, और भैया अपन सभी बड़े ध्यान से सुनाते हैं जी भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम में हम आपको समय समय पर ऐसी भेंट वार्ताएं ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी खेती किसानी का जो कार्य है उसको हम बहुत अच्छा कर सकें और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं। आप कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, और इनसे जो बातचीत का विषय है वो है वर्मी कंपोस्ट का महत्व एवं उत्पादन तकनीक। तो ये तो आप जानते ही हैं, वर्मी कंपोस्ट का लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है और इसके उपयोग से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है। तो हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं, डॉक्टर साहब वर्मी कंपोस्ट का क्या महत्व है और इसको किस तरह से उत्पादित किया जा सकता है, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है जो विषय कहता है।
2: किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ, और इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानना जरूरी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो वर्मी कंपोस्ट का महत्व है, कई दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि देखा जाए तो आजकल हम सब जानते हैं, कई जगह चर्चा होती मिल जाएगी, समाचार में मिल जाएगा कि हम लोग आजकल जो अन्न खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, बहुत ही प्रदूषित हो गए हैं। यहाँ तक कि पानी तक प्रदूषित हो गया है। और प्रदूषण में मुख्य रूप से क्या है कि प्रदूषण में रसायनों का जहर है और जहरीली गैसें हैं, पॉलीथीन जैसी चीज़ें हैं, इस तरह के जो तत्व हैं वो पूरा प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। तो खेती का जो शुद्ध अनाज है या शुद्ध सब्जियां हैं वो प्राप्त करने के लिए एक तो वर्मी कंपोस्ट का महत्व है। दूसरा, अगर देखा जाए तो पर्यावरण की शुद्धता के लिए वर्मी कंपोस्ट का महत्व है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो तैयार होता है वो कचरे से और जिन चीज़ों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, जिनसे गंदगी होती है और पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं उससे खतरा, प्रदूषण फैलता है।
1: इस जगह पे थोड़ा सा एक संशय है
2: जी,
1: बेकार समझते हैं इसमें, क्या प्लास्टिक को भी हम जोड़ लिए जाएंगे, जोड़ेंगे क्या?
2: नहीं, जो बायोडिग्रेडेबल या बायो डिकम्पोजेबल
1: जी
2: जो पदार्थ हैं
1: जी,
2: उनको ही अपन वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोग किया जाता है
1: जी।
2: देखते हैं हम, जैसे कई जगह गांव में देखे, रोड पे तमाम कचरा फैला होता है, घर के आसपास कचरा फैला होता है,
1: शहरों में देखिए,
2: शहरों में भी घरों में सब्जी भाजी वगैरह लोग बाग बनाते
1: हैं, पत्ते हैं, कचरा है, ये सब
2: है ना घर की। और दूसरी चीजें जो डिकम्पोज हो सकती हैं उनको भी तमाम फैला करके गंदगी फैलाई जाती है
1: जी।
2: तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक पर्यावरण के लिए भी केचुआ की खाद वर्मी कंपोस्ट तैयार करना बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है
1: जी।
2: तो इस तरह से हम देखें कि कृषि से लेकर के पर्यावरण तक
1: जी
2: सबको सुधार करने में, उसका संवर्धन करने में इसका वर्मी कंपोस्ट का महत्व तो है
1: जी।
2: तो अब इसका हम चर्चा करते हैं कि
1: प्रोडक्शन
2: प्रोडक्शन कैसे किया जाए। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले समझना जरूरी होगा कि इसमें जो वर्मी कंपोस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है वर्म्स या केचुए
1: जी।
2: केचुए कई तरह के होते हैं, एक तो लोकल केचुए होते हैं
1: जो हमें अपने गमलों में, बगीचे में, खेतों में दिख जाते
2: जो
1: हैं,
2: कभी कभी दिख जाते हैं
1: जी।
2: वैसे पहले तो हर जगह थे, बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे
1: जी।
2: लेकिन आजकल इसी प्रदूषण की वजह से और जो ये रासायनिक खेती का प्रचलन बढ़ा, जिसमें हम रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं
1: जी,
2: है ना, और रासायनिक जो दवाइयां, चाहे इंसेक्टीसाइड हो, फंजीसाइड हो या जो हर्बीसाइड हो, इनका उपयोग करने की वजह से ये केचुए आजकल विलुप्त की स्थिति में हो गए हैं
1: बिल्कुल।
2: और ये कहीं ना कहीं या कि खत्म हो गए या जमीन में बहुत गहराई में जाकर के ये सुसुप्त अवस्था में छिप गए हैं
1: जी।
2: तो एक तो लोकल वाले केचुए होते हैं, दूसरे कुछ फॉरेन केचुए हैं,
1: आयातित
2: केचुए हैं। तो उनमें जो वर्मी कंपोस्ट के लिए सुटेबल माना जाता है वो सबसे अच्छा केचुआ होता है जो फास्ट फीडिंग हो, जल्दी खाना खाता हो
1: जी,
2: और उसकी बढ़वार भी अच्छी होती हो, और जो क्लाइमेट

0: को सहन कर सके, यहाँ का जो लोकल क्लाइमेट है यानी कि जो टेम्परेचर की विविधता है, यानी कम ऊपर नीचे होता रहता है टेम्परेचर,
1: गर्मी सर्दी,
0: तो इसके बदलावों को जो सहन करने की क्षमता हो, ऐसा केचुआ अच्छा माना जाता है।
1: तो शिवपुरी में है इस तरह का केचुआ?
0: बिल्कुल है, और इसमें जो है ना एक दो स्पीसीज हैं, एक तो आइसिनिया फोर्टिडा बोलते हैं या रेड वर्म उसको बोलते हैं
1: जी,
0: और जनरली जो वर्मी कंपोस्ट के लिए हम उपयोग करते हैं तो यही वाला केचुआ उपयोग करते हैं
1: जी,
0: है ना। वैसे तो ये विदेशी केचुए हैं, लेकिन यहाँ ये इसमें ये वाला जो है जो रेड वर्म है या आइसिनिया फोर्टिडा जो है, इसकी टेम्परेचर के प्रति सहनशीलता बहुत ज्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: -5 डिग्री से लेकर के +45 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर आसानी से झेल लेता है ना। तो इस हिसाब से इसका देखा जाए अब बहुत फास्ट फीडिंग है, मतलब ये जब हम कचरा डिकम्पोज करने के लिए इसको खिलाते हैं तो वो तेजी से खाता है, और हमको ऐसा ही केचुआ चाहिए कि जो जल्दी कचरा को खाए और उसको जल्दी कंपोस्ट में कन्वर्ट करे
1: जी।
0: तो उस हिसाब से एक ये है और सबसे अच्छा यही माना जाता है, और दूसरा एक और है जो अफ्रीकन वर्म बोलते हैं उसको
1: जी, है ना? आम कोई जुबान में उसको कहा जाता हो जो किसान जल्दी समझ सके?
0: उसको तो पहचानना पड़ेगा देख करके।
1: अच्छा।
0: जैसे इस एक तो नामकरण इनका अलग है
1: जी,
0: उसको जो है ना अंग्रेजी में करना चाहिए, उसका जो बायोलॉजिकल नेम है आइसिनिया फोर्टिडा है रेड वर्म का
1: जी,
0: है ना। और दूसरा जो है ये अफ्रीकन वर्म, अफ्रीकन वर्म को यूडिलस यूजिनिया बोलते हैं,
1: इसका बायोलॉजिकल नेम होगा,
0: बायोलॉजिकल नेम है जी। तो अब इसमें अंतर भी है, अगर पहचानना चाहे, कई बार ऐसा घालमेल हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है कि उनको जो है ना पहचान में भी नहीं आते हैं या कि एक दूसरे में रहते हैं, कई बार अगर मिक्स है तो थोड़ा एक सिंपल सा उसका पहचान होता है कि एक तो जो रेड वर्म है वो रेडिशनेस ज्यादा होता है उसमें, लालपन
1: रेड उसका नाम है
0: ना। और दूसरा ये है कि उसमें इसमें एक गठान सी होती है जो उसका इंटीरियर भाग होता है, आगे का हिस्सा होता है, तो उससे नजदीक में एक गठान सी होती है ना
1: रेड वर्म में,
0: हाँ क्लाइटेलस बोलते हैं उसको।
1: अच्छा, और दूसरे वाले में?
0: दूसरे में भी होती है, होती दोनों में है।
1: हाँ।
0: लेकिन जो पहला वाला है ये जो 14 से 17 गठान सेगमेंटेड होता है केचुआ, जो है ना छोटे छोटे सेगमेंटों में बटा रहता है
1: गठान से, जैसे गन्ने में गठाने होती है, जस्ट लाइक उसी तरह
0: से थोड़ा सा और चौड़ा, ये एक गठान सा दिखेगा, चिकनाहट होगी उसमें और मोटा मोटा हो जाता है वहाँ, तो उसको क्लाइटेलस बोलते हैं। एक्चुअली उसका उपयोग जो है ना जो अंडे होते हैं उसको भंडारित करने के काम आते हैं,
1: स्टोरेज करता है,
0: स्टोरेज अंडों को स्टोरेज करता है, तो उस वो क्लाइटलस जो है ना जो इसका अग्रभाग होता है यानी मुंह का हिस्सा होता है उससे नजदीक में होता है, और अगर सेगमेंट की भाषा में बात करें तो ये 14 से 17 सेगमेंट के बीच में कहीं होता है
1: जी।
0: लेकिन जो दूसरा है अफ्रीकन वर्म है उसका लगभग 27 से और 28-29 के जो सेगमेंट होते हैं उनके आसपास होता है, तो इस तरह से उसको जो है ना पहचान सकते हैं देख करके कि ये कौन वाला होगा। तो कई बार एक ही उसमें दोनों मिल सकते हैं और नहीं तो अलग अलग हो सकते हैं।
1: अब इनका उत्पादन
0: तो
1: कैसे करें?
0: ये तो हम केचुए का उपयोग करेंगे।
1: हाँ।
0: और इन दोनों में से अगर कोई भी मिल जाता है तो ये अच्छा फास्ट जो है ना उसको
1: फीडिंग करते हैं, खाते हैं तो उत्सर्जन ज्यादा करते हैं,
0: बिल्कुल, तो इनका हम उपयोग करेंगे। दूसरा इनका जो बनाने का विधि है, तो बनाने के लिए हमको 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो जो कचरा, दूसरा गोबर, तीसरा ये जो वर्म्स होते हैं केचुए, और चौथा स्थान।
1: अच्छा।
0: जहां पे कंपोस्ट बनाया जाना,
1: गड्ढा करना है।
0: हाँ बिल्कुल। अब ये जो है ना तीन विधियां हैं इसका, स्थान के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो तीन विधियां हो सकती हैं, एक तो फार्म पिट कंपोस्ट के रूप में, है ना, जहाँ अपना खेत होता है, फार्म होता है, वहीं गड्ढा बना लीजिए, और गड्ढा बना करके वहीं आप कचरा इकट्ठा करिए, गोबर इकट्ठा करिए, उसी में जो है केचुए को छोड़ दीजिए और वहाँ कंपोस्ट तैयार होगा
1: जी।
0: दूसरा है कि सरफेस ग्राउंड में हीपिंग करके, हीपिंग मेथड से,
1: हीपिंग बोले तो
0: मतलब एक ढेर लगा के लंबे,
1: अच्छा, अच्छा,
0: जिसे
1: अच्छा।
0: खेतों में मेड़ होते हैं ना,
1: अच्छा अच्छा,
0: उस तरह से जो है ना एक समतल जगह पे मेड़ टाइप का ढेर लगाइए कचरे का, गोबर का, और उसमें केचुए छोड़िए, उसका जो है ना गीले बोरों से ढकना, और फिर उसमें समय समय से पानी देना, और उसको जरूरत पड़े तो ऊपर नीचे उसको मिक्स करके, तो ये भी बहुत फास्ट मेथड होती है। बस इसमें आपको व्यवस्था करना है एक तो सरफस की, कि पक्का सरफस अगर कर लें तो अच्छा है, या पॉलीथीन भी छा करके भी ये किया सकता है, और दूसरा इसके ऊपर छाया। छाया इसलिए ज़रूरी होता है कि केंचुओं के लिए डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट रेनफॉल ये नुकसानदायी होता है, और शायद इसके वजह से वो मर भी सकते हैं या भाग भी सकते हैं, तो अपन इससे बचाव के लिए थोड़ा शेड का व्यवस्था करते हैं। शेड अगर

0: नेचुरल शेड है आपके पास, कहीं घना पेड़ है उसके नीचे भी कर सकते हैं, वो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर घनी छाया नेचुरल नहीं है आपके पास, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, तो आप छाया के लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे थोड़ा ऊंची जो है ना तीन चादरों का उपयोग कर सकते हैं,
1: मचान बना सकते हैं,
0: छप्पर
1: जो खपरेल का जो होता है या घास फूस का होता है
0: उसका भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से एक छाया का निर्माण किया जा सकता है उसके नीचे। तो इस तरह से ये दूसरा जो है ना सरफेस हीपिंग हो गया, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है कंक्रीट पिट मेथड।
1: अच्छा,
0: कंक्रीट पिट मतलब पिट ऐसा है 2 से 2.5 फीट ऊंचा
1: जी,
0: है ना, और करीब 3 फीट चौड़ा का, और सुविधा अनुसार और अपनी सुलभता अनुसार आपके पास जितना जगह है, जितनी संसाधन है, उसके आधार पे उसको लंबाई में हम रख सकते हैं। अब इस तरह का जो पीट बना लें, और हमको कितना टारगेट है हमारा कंपोस्ट बनाने का, उस टारगेट के हिसाब से हम अपने नंबर ऑफ पीट या लंबाई उसकी पीट की रखते हैं। और उसमें कम से कम ये भी माना जाता है कि जो हम कचरा उपयोग करते हैं या गोबर उपयोग करते हैं तो कम से कम 20 दिन पुराना होना चाहिए, या कचरा उपयोग करते हैं तो बिल्कुल सूखी पत्तियां, ताजा कचरा नहीं होना चाहिए। कचरा का मतलब जो फसल के अवशेष होते हैं,
1: पहले गला लीजिए, उसे सड़ा दीजिए, थोड़ा
0: सड़ा दीजिए, और अच्छा होता है कि गोबर की सैलरी बना करके उससे जो है ना उसको मॉइस्ट कर दीजिए, भिगा दीजिए, और तो वो जल्दी थोड़ा सा सेमी डिकम्पोज अवस्था में आ जाता है, अर्ध सड़े हुए अवस्था में फिर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे गोबर भी कहते हैं, ताजा गोबर का उपयोग इसमें नहीं होना चाहिए। ताजा गोबर देने से वहां हीट का जनरेशन होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, और उससे केचुए भाग जाएंगे या मर जाएंगे, उसमें अगर दब जाएंगे तो
1: उसे पहले ठंडा करें, उसे ठंडा करें, पुराना करें,
0: बिल्कुल पुराना, तो लगभग 20 दिन अगर पुराना कर लेते हैं। तो इस तरह की चीजों को इकट्ठा करके मिला करके हम केचुए को खाने के लिए देंगे, तो ये वहां का जो तापमान है, वहां की नमी है, अगर अनुकूल बना के रखेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी फीडिंग करेगा, और लगभग 2.5 महीने के आसपास ये पूरा आपका कंपोस्ट तैयार करके दे देगा।
1: तो डॉक्टर साहब, आपने वर्मी कंपोस्ट का क्या महत्व है ये भी बताया, और इसकी उत्पादन की क्या तकनीक हो सकती है, 3 तकनीकों का आपने जिक्र किया। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान श्रोता इसका पालन करेंगे और वर्मी कंपोस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपनी खेती में लाभ लेंगे, और अगर इसका कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं तो इसकी बिक्री करके भी अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आप हमारे किसान साथियों के साथ आए इस किसानवाणी कार्यक्रम में।
2: भैया बहनों, अपन जे भेंट वार्ता सुन रहे हते, जीगो विषय हतो वर्मी कंपोस्ट का महत्व एवं उत्पादन तकनीक, और जा विषय पे जानकारी दे रहे हते डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, और इनसे बतिया रहे हते अपे भैया डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया जी, अपन ने कितनी अच्छी भेंट वार्ता सुनी, और भैया अपन को जे वर्मी कंपोस्ट से भैया अपन को जाको उत्पादन से अपन बढ़ाना है भैया, है ना। तो भैया जी, बातन को अपन को अमल करना है, जहाँ से भैया भाई खेती किसानी में अपन को लाभ मिल सके। और देखो भैया बहनों, आप एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जा विषय पे। तो भैया रो, भारत सरकार भी भैया किसान भैयान को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि जैसे रोग, कीट, फसल खराब हुए पे वित्तीय सहायता यानी मुआवजा प्रदान करने वाली एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है, जी को नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और भैया जाको मुख्य उद्देश्य जो है कि किसान भैयान को आर्थिक सुरक्षा देनो और खेती में नुकसान के डर को कम करत है, और खेती में निरंतरता सुनिश्चित करवे के लाने किसान भैयान को आय को स्थिर करत है, और भैयान की नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनावे के लाने सोई प्रोत्साहित सोई करत है, कृषि क्षेत्र के लाने ऋण को प्रभाव सुनिश्चित करत है। देखो भैया रो, जा योजना के तहत किसान भैया द्वारा दी गई वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीद की सभी फसलन के लाने भैया 2% और रबी की फसलन के लाने भैया 1.5% है, और भैया वार्षिक बागवाणिज्य यानी बागवानी फसलन के लाने बीमा किस्त 5% है। और देखो भैया रूप, अपन को जाय योजना में भुगतान की जाए वाली प्रीमियम दरें बहुत ही कम है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के खिलाफ किसान भैया को पूरी बीमा राशि प्रदान करवे के लाने शेष प्रीमियम को भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। तो देखो भैया, सरकारी सब्सिडी की कोनो ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 9% है तो भी भैया सरकार द्वारा बहन भैया को जे कियो जाएगा और जैसे भैया फसल प्रीमियम की दरों को सीमित करवे को भैया प्रावधान हतो और जैसे परिणाम स्वरूप किसानों को भैया दावों को कम भुगतान कियो जाते है। जे कैंपिंग प्रीमियम सब्सिडी पे सरकार के खर्च को सीमित करवे के लाने कियो गौ हतो। और देखो भैया रू, अब जा सीमा को अब हटा दियो गौ है और किसान भैयन को बिना कोनो कटौती के पूरी बीमा राशि दई जाऊ थे। तो भैया रू, जा योजना के लाने आसान नामांकन की सुविधा प्रदान करत है और कोनो भी प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ होनो, वासे फसल सड़गल जाऊ थे और ओले पड़नो, तेज तूफान, भूकंप और ओलावृष्टि जैसी भैया प्राकृतिक आपदाएं घटना घटित होवे के भैया 72 घंटों के भीतर फसल के नुकसान की आसान रिपोर्टिंग की सुविधा कर दी गई है। जैसे प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान को नई तरीकी उपकरण से फसल को नुकसान को आकलन करवे के लाने सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग तकनीक, ड्रोन, कृत्रिम और बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को उपयोग किया जाऊते है। जैसे भैया फसल के नुकसान होवे को मुआवजो पता चल जाऊते है कि कितने का भी फसल भैया खराब हो गई है तो काहे की भैया जी फसल को नुकसान उनको बाको मुआवजो मिल जाऊते है। तो भैया बहनों कहवे को जो ही मतलब है कि अपई कोनो भी फसलन को अगर नुकसान हो जाऊ थे तो जा योजना में अपन के माध्यम से भैया अपन को बाकी मुआवजा मिल जाऊ थे सरकार द्वारा। तो भैया जा योजना में आवेदन कर बिकलाने अपन नज़दीकी बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से अपनी फसल की बुआई से बुआई के 10 दिनों के भीतर आवेदन सुई कर सका थे। तो भैया रो, जय योजना की आवेदन के लाने दोनों तरह की प्रक्रिया से अपन कर सकते हैं, एक तो भैया ऑफलाइन और दूसरी भैया ऑनलाइन प्रक्रिया से जहाँ में आवेदन कर सकते हैं। तो भैया ऑफलाइन प्रक्रिया में अपन को अपने नज़दीकी बैंक शाखा जितने आप खातों है उतने भाई कॉमन सर्विस सेंटर जाके आवेदन फार्म भर सकते हैं जहाँ में जो आप भैया लाभ भी मिलेगा। तो भैया जय योजना को जरूर अपन को भैया लाभ लेना है। और देखो भैया, अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को महत्व। भैया बहनों, अब बात करने जा रहे हैं कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को महत्व। भैया अपन देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन अपने किसान भैया खेती के आधुनिक तरीकों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कहे कि आधुनिक खेती या स्मार्ट एग्रीकल्चर की दिशा में ड्रोन तकनीक एक अहम भूमिका निभा रही है। ड्रोन को उपयोग न केवल खेती को आसान बनावो है बल्कि समय पे पानी और लागत की भी बड़ी बचत करत है। और अपन सभी देख ही रहे हैं कि बदलत भाई दौर के संग ही अब खेती भी आधुनिक तकनीक से जुड़ जा रही है। परंपरागत तरीकों के संग ही संग अब हपाए किसान भैया आधुनिक कृषि क्षेत्र की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और जे ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों के भैया खेती को आसान, सुरक्षित और अधिक लाभकारी बना जा रहा है। बीज बोवे से लेकर कीटनाशक दवाएं, छिड़काव और फसल की अच्छी सेहत जान लेवे के लाने ड्रोन तकनीक किसान भैया के लाने एक नई उम्मीद उभर के आई है। तो भैया बहनों, ड्रोन को सबसे बड़ा फायदा जो है कि जाको उपयोग बीज बोवे और कीटनाशक छिड़काव में कियो जाऊ थे। जैसे कि भैया रो, अपन आम सेब है, अमरूद है, जैसे ऊंचे पेड़ वाली फसलें हैं पर ऊपर तक न अपन भैया कीटनाशक छिड़काव दवाई नहीं छिड़क पाते। तो भैया ड्रोन की मदद से जो काम बड़ी आसानी से हो जाते जा

फसलन की सुरक्षा अच्छे से हो जाते हैं। और भैया ड्रोन से छिड़काव करवे से जे रासायनिक जहाँ में खेतन में कीटनाशक दोनों यूरिया पोषक तत्वों सीधे भैया जहाँ से अपने किसान भैया एक समान सटीक छिड़काव कर सकते हैं। और भैया खेतन में काम करने वाले और भी लोगों को जे हानिकारक बीमारियों से बचा सकते हैं जहाँ से और सुरक्षित रह सकें। और देखो भैया रो ड्रोन तकनीक को एक और बड़ा लाभ जो है कि फसल की अच्छी सेहत रहते हैं। और भैया अपन को भी बाकी जानकारी समय पे मिलत रहते हैं। और ड्रोन की मदद से अपने किसान भैया फसलन को नुकसान होवे से बचा सकते हैं समय समय पे। और संगे भैया समय की बचत भी ड्रोन तकनीक को एक बड़ा महत्व है। और भैया जाको भैया रो फायदा सोई है कि काहे कि जोन काम पहले 2 दिन में कई मजदूर मिलके करत हते अब जाए स्प्रे या सिंचाई बोई काम ड्रोन की मदद से मात्र भैया एक एक घंटा में कियो जा सकत है। जहाँ से किसान भैयान को समय और मेहनत दोनों बनत है भैया समय और भैया दोनों ही चीजें बच जाते हैं। तो भैया जाके संगे ड्रोन तकनीक पानी की बचत में भी कामगार साबित हो रही है जहाँ से अपन कम पानी में भी अच्छी फसल कर सकते हैं। यानी भैया रो जी ड्रोन तकनीक को कृषि क्षेत्र में उपयोग करवे के लाने सरकार भी जाए बढ़ावा देवे के लाने कई योजनाएं चला रही हैं जैसे किसान ड्रोन योजना और नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूह ग्रुप्स को भैया 80% तक सब्सिडी दी जाते हैं। तो जे ग्रुप ड्रोन सर्विस के माध्यम से किसान भैयन को सुविधा प्रदान करते हैं जहाँ से किसान भैया जागरूक हो सके और ड्रोन तकनीक को लाभ ले सकें जहाँ से भैया आधुनिक खेती में भी नए तरीकों से अपना के अपनी फसल और अपनी आय दोनों में वृद्धि कर सकते हैं और अच्छा लाभ सुई मिल सकते। तो भैया रो कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को बहुत ही बड़ा महत्व है और जाको भैया लाभ लेना है जहाँ से भैया अपनी खेती और अच्छी हो सके और अपना समय और पैसा भैया दोनों बच सकते हैं। और देखो भैया रो अपन चर्चा और करेंगे लेकिन पहले भैया और मनोरंजन कर लेते हैं और सुनाते हैं मंजू शर्मा को जी गाभा लोकगीत।

यारो अब अपन सुन रहे हते जे लोकगीत जी को गावा हतो मंजू शर्मा ने। और देखो भैया बहनों अपन चर्चा करते हैं आज के मौसम की। तो भैया आज शिवपुरी जिले को अधिकतम तापमान रहो 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 26 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता यानी नमी रही 30%। और देखो भैयारो हवा की बात करें तो हवा की गति रही 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो भैया जे तो हती आज के मौसम की जानकारी की चर्चा। और देखो भैया हम चर्चा तो और भी करना चाहते लेकिन भैया हमें चौपाल कार्यक्रम को भैया अब समय भी अब समाप्त हो चलो है। तो भैया पे रजनी बहन को आज्ञा दो। राम राम, जय जवान, जय किसान।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, नाउ वी ब्रिंग यू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अनुप्रिया पटेल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑन हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स एंड अचीवमेंट्स। द इंटरव्यूअर इज निहारिका भुवानिया।
2: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें

0: एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं, जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक, इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं, आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे ना केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है। तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
0: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है, और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है, और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है। और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: शायद कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं।
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में, किसी भी अस्पताल में, किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने

0: रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा। उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई

0: होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशन आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं। जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है। और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है, यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया, जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड 19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है

है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है,

0: के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निःशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो। जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया। और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब कोविड-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से कोविड-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए।

0: हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है,
1: बिल्कुल भी
0: आसान
1: नहीं
0: लक्ष्य नहीं है।
1: जी।
0: और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल
1: डिजिटल
0: सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है, तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं, जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज है, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान, बीड़ी, मसाला, शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग, व्यायाम, किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं। और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है। 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है। और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है। और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार।
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्री 420 से गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
1: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कवि हेमंत देवलेकर,
3: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाजें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
3: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला, बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय

पैसे के दो तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। आठवीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन की

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति। He is accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and Vidwan Sri M. Haribabu on the Ghatam. Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है। That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri M.S.N. Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया। With this we come to the end of tonight's रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the mridangam and on the ghatam by Vidwan Sri M Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय।